और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और क्या है।

0: और नौ एन टी मारे बेरियो फन हैप्पी ऑल टेट एन थ्री सेंसेशन
1: एक नशा से चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फॉर वन

0: नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना। नींद में बहुत कुछ हो जाए, में बहुत कुछ हो जाए।
1: दोस्तों इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जांजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी के नाम है साजन और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

दर्दे करने को ये सॉन्ग थे और हम चलते ही दोस्तों आप लोग जानते ही यार नीख तक का सोन और वो कुछ और थे और ओल्ड इन गोल्ड तो और कुछ है दोस्तों और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है लेकिन हम चलते हैं यार नीघन तक का जों और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे मोफिक राम है जाजन

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और है मैं दी मुकेश का ये सॉन्ग है।

दोस्तों मैं दीवाना मस्ताना और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है मैथिली मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

अभी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांज करते हैं तो हम चलते हैं, मौफी के नाम है भरोसा। निकटी होंद द्रियन सस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: tip.
1: Zo, die kan wel een cool best pro.
2: Yes, doosto. तो ये कुछ बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निकटी द्री एंसेस्टर का बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

अरे दिल मुझे भी आ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

0: इस मूवी में और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौजात के साथ में
1: टूटे ना दिल टूटे ना।
0: हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जैसे दूर कोई गाए धुनिए।

0: और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मन और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल का ये सॉन्ग है।
1: मेरी सनम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू। आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी।

अभी आप सुन रहे थे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू फ्रॉम द मूवी मेरे सनम से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में आशा भोसले के साथ में।

अभी आप सुन रहे थे फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। गा दीवाने झूम के फिल्म का नाम है फ्लैट नंबर 9। इसी फिल्म से आपको सुनाने वाले हैं द माइटी मुकेश जी।

0: दीवाने।
1: अभी आप सुन रहे थे गा दीवाने झूम के, रात के जुल्फे झूम के, मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, ब्लफ मास्टर है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आप सुनेंगे।

सोचा था प्यार हम ना करेंगे, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लफ मास्टर से हमने पेश किए हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। लता जी के साथ में मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है, दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर। उजाला है फिल्म का नाम।

अभी आप सुन रहे थे दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, इस दिल में क्या हुआ है, एक सपना सा जागा है। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी परवाना से आप सुनेंगे।

जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जागा है। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना, से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं, ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं मगर आसमां वाला नहीं। चल मेरे दिल लहरा के चल।

चल मेरे दिल लहरा के चल, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इशारा से, अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ, फ्रॉम द मूवी परवरिश से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में मन्ना दे जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। मन्ना दे जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। कोई कोई आदमी दीवाना होता है, फ्रॉम द मूवी स्वीट हार्ट से हम पेश करेंगे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, और जो किसी के जाने के बाद होता है वो पछतावा होता है।

नमाइती मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे कोई कोई आदमी दीवाना होता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हमसफर है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हमसफर है जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है, जो सिर्फ खुशी का मोल करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। फ्रॉम द मूवी मधुमती से आप सुनेंगे

जो सिर्फ किसी का मोलक यानी जो सिर्फ खुशी का मोलक करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। नमाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मधु मालती। जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी में यानी जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी की आंखों में आंसू आपके लिए।

द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सोता यानी सोसाइटी से, दिल मेरे तू अकेला था तू अकेला है। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती है जनाब, मुस्कुराहटें भी झूठी हुआ करती है जनाब, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। मोहम्मद रफ़ी आपको सुनाने वाले हैं ओ मेरे शाह हुआ।

अभी आप सुन रहे थे ओ मेरे शाह खुबा ओ मेरी जाने जनाना, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं मोहम्मद रफ़ी जी और वो आपको सुनाने वाले हैं रंग और नूर की बारात, किसे पेश करूं।

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। नादान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जीवन भर ढूंढा जिसको।

का नाम है नादान और इसी फिल्म से हमने पेश किए है जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। द माइती मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी ढूंढ से हम पेश करते हैं उलझन सुलझना।

अभी आप सुन रहे थे उलझन सुलझे ना, रास्ता मुझे ना, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां, फ्रॉम द मूवी ढूंढ से हमने पेश किए हैं आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। सबर रखे ना धूप रहती है ना छाव रहती है, सबर रखे ना धूप रहती है ना छाव रहती है देर तक। पगला कहीं का है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे।

पगला कहीं का है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किया है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में तुम मुझे यूँ भूला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग भी तुम गुनगुनाओगे। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं, जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उनको समझना आसान नहीं होता। मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, काश के मेरा कोई सहारा होता।

द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे काश के मेरा कोई सहारा होता, आज मैं काहे को आवारा होता। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, लेकिन मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं। काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। तेरी नीली नीली आँखों के दिल पे तीर चल गए।

अभी आप सुन रहे थे तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने। जाइए आप कहाँ जाएगी ये नजर लौट के फिर आएगी। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी के वास्ते कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ख़ास है वो लोग जो वक्त आने पे वक्त दिया करते हैं। मेरी सनम है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं। जाइए आप कहाँ जाएगी ये नज़र लौट के फिर आएगी, और ये खास गीत हम पेश करते हैं शर्ली के वास्ते।

आशा भोसले की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मेरे सनम से हमने पेश किए हैं। जाइए आप कहाँ जाएगी ये नजर लौट के फिर आएगी, और ये गीत हमने पेश किए थे शर्ली जी के वास्ते। रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते, रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते, और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आए आ रहे हैं सुमन कल्याणपुर के साथ, तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, और ये गीत हम पेश करते हैं धीरज की तरफ से आरती जी के वास्ते बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ।

मोहम्मद रफ़ी जी भी आपको सुनाने वाले थे। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जवान होती है, और ये गीत हमने पेश किए हैं ख़ास करके धीरज की तरफ से, आर टी जी के वास्ते, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ। खामोश रहो सिर्फ खुदा ही है, खामोश रहो सिर्फ खुदा ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ उतार देगा। बाहोशो हवाश में दीवाना, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

मोहम्मद रफ़ी जी अभी आपको सुनाने वाले थे बाहोशो हवास में दीवाना। इस हिस्से में एक आखिरी गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। मोहम्मद रफ़ी जी सुमन कल्याणपुर रिजी म्यूकर सुनाते हैं, कह दो जहाँ से कह दो इश्क पर जोर नहीं।

आप सुन रहे थे जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, ताजमहल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं, गीत का बोल है अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आ रे आ रे आ रे।

अभी आप सुन रहे थे अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आ रे आ रे आ रे, पांव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ताजमहल।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ताजमहल से आप सुन रहे थे पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। जिंदगी में हमेशा उस इंसान की कदर करो, जिंदगी में हमेशा उस इंसान की कदर करो जो अच्छे वक्त में आपकी खुशी में शामिल रहे और बुरे वक्त में आपका साथ दे। सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज़ फ्रॉम द मूवी अमन से हम पेश करते हैं और आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी।

0: टू एंजॉय एवर।
1: अभी आप सुन रहे थे सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नास। फ्रॉम द मूवी अमन से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। पुजारिन है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा प्यार मेरा।

नमाई थी मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पुजारिन से हमने पेश किए हैं मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा सागर से गहरा प्यार मेरा। गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे यूं मुसाफिरों की तरह, गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे यूं मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती हैं रुके रस्तों की तरह। फ्रॉम द मूवी अपने हुए पर आए इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैंने बुलाया और तुम आए। लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

हुए पराये हैं फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मैंने बुलाया और तुम आए। लता जी की आवाज़ में अभी आपने सुने हैं और म्यूजिक दिए हैं शंकर जय किशन जी। दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज़ है, फ्रॉम द मूवी जिंदगी और मौत से हम पेश करते हैं। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज़ है, फ्रॉम द मूवी जिंदगी और मौत से हमने पेश किए हैं, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे। एक गलत बात और एक अधूरी बात, एक गलत बात और एक अधूरी बात न जाने कितने ही रिश्ते तोड़ देती हैं। जिंदगी है क्या, सुन मेरी जा, प्यार भरा दिल मीठी जुबां, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माया से आप सुनेंगे और म्यूजिक दिए है सलील चौधरी ने।

फ्रॉम द मूवी माया से हमने पेश किए है जिंदगी है क्या, सुन मेरी जा, प्यार भरा दिल, मीठी जुबा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। वक्त है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन ये गीत पेश करने से पहले एक बात बोलूं, भरोसा उस पर करो तो तुम्हारी तीन बातें पहचान सके, भरोसा उस पर करो तो तुम्हारी तीन बातों पहचान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह।

अभी आप सुन रहे थे हम जिप्सी मिट्टी आपकी बाहों में आ गए, फ्रॉम द मूवी वक्त से हमने पेश किए है, आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी में एक चीज़ तो कभी डिलीट नहीं होती, जिंदगी में एक चीज़ तो कभी डिलीट नहीं होती और वो है किसी की यादें। ये वादियाँ ये फिजाएँ बुला रही है तुम्हें, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आज और कल।

0: जानी है तुम्हें।
1: अभी आप सुन रहे थे ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे।

प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन, एक ना एक दिन हमको अपने घर जाना है, सही घर, परम धाम जिसे हम कहते हैं, भगवान के दरबार में जहां से हम आए हैं, वहीं हमको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। इस बात को आप मत भूलें प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों। आने वाला अमृतवाणी में दूसरा भाग सुनेंगे आप। आज हम जिस किसी भी मनुष्य के संपर्क संबंध में आते हैं, हम देखते हैं कि उसे कई प्रकार की हथकड़ियां लगी हुई है, उसकी टांगे में कई प्रकार की बेड़ियां पड़ी हुई है, बल्कि इससे भी ज्यादा वो बंधनों में पड़ा हुआ है। क्योंकि हथकड़ियों में पड़ा हुआ व्यक्ति यदि चाहे तो स्वतंत्र चिंतन तो कर ही सकता है, परंतु जिसके चिंतन को ही हथकड़ियां लगी हुई है, वैचारिक स्वतंत्रता तो रहित वो व्यक्ति तो ऐसा कैदी है कि जिनकी तुलना नहीं है, मित्रों जिनकी तुलना ही नहीं है। आज मनुष्य की ऐसी ही स्थिति है, ऐसी ही स्थिति है। वो कई प्रकार के लगाव और झुकाव या मनमुटाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और ये आपको पता है, फिर भी आप उससे छुटकारा पाने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हो और रात दिन रोते गाते हो, हम दुखी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, अशांत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जकड़ा हुआ है वो हर एक तरह के जंजीरों में। उसके व्यवहार और उसकी बातचीत से ये स्पष्ट झलक मिलती है कि वो किसी बंधन में बंध कर बातचीत या व्यवहार कर रहा है। ये पहचान में आ जाता है, मालूम होता है कि उसकी दिमाग पर कोई सवार है, उसे गधा, घोड़ा, खच्चर या ऊंट बनाकर चला रहा है, कोई उसे ये सब चीज बनाकर चला रहा है। किसी का मन किसी वस्तु रूपी खूंटे से बंधा है, और बंधा होने के कारण वो वहां से आगे नहीं चल सकता, तो अन्य किसी देहधारी में उसका मन अटका हुआ है, और वो भी उस दलदल से निकल नहीं पाता है, मित्रों नहीं पाता है। कभी कभी उसे क्षण भर के लिए ये महसूस भी होता है कि ये सभी व्यर्थ ही के लगाव झुकाव रूपी बंधन है, लगता है उसको ऐसे, इन्हें तोड़ देने में ही मेरी भलाई और मुक्ति है। परंतु फिर भी उसके मन पर जो व्यक्ति या वस्तु हावी है, वे उसे मीठी सलोनी पुचकार देकर अपने पाशों में बांधे रहते हैं, अपने लगामों में बांधे रहते हैं। मित्रों, मनुष्य ने निष्ठोमो का आदेश उपदेश सुन तो रखा है, अमृतवाणी का उपदेश सुन तो रखा है, सुन रहे हैं भी, और विचारक प्रचारक तथा सुधारक लोग दूसरों को इसका पाठ पढ़ाने में भी लगे रहते हैं, परंतु वास्तव में मनुष्य मोह माया को नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि मोह ममता उसे नष्ट कर रहा है, मोह ममता उसे नष्ट कर रहा है। किसी में किसी व्यक्ति के प्रति मोह नहीं है तो महिमा और उपाधि में मोह है। मित्रों, अन्य किसी का घर और घर वालों में मोह नहीं है तो अपने आश्रम और अनुचरों में मोह है। मित्रों,
राजा जनक के दरबार में एकत्रित सन्यासियों की तरह किसी का अपनी लंगोटी, सोटी या अंग वस्त्र और अंगूछे में मोह है। मित्रों, इस मोह

आज लोक सेवा का नाम लेकर, लोक सेवा का नाम लेकर भी लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। ये सब लुटेरे हैं, ढोंगी लोग हैं, ढोंग लोग। वे धन दौलत इकट्ठा न भी करे तब भी सत्ता स्थान और यश कीर्ति के प्रलोभन में तो पड़े ही रहते हैं। अधिकार के अहंकार में तो उन्हें मजा आता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे दूसरों को मजा चखाने में लगे रहते हैं। मित्रों, तन मन धन से सहायता देने वाले, योग से सहयोग देने वाले, कर्मठ होकर ठोस सेवा करने वाले तो और लोग होते हैं, परंतु यश की इच्छा वाले व्यक्ति लोक सेवा का नारा लगाकर, लोक सेवा का डंडोरा पीकर मान शान और साधन सामग्री के मोह के सीढ़ी से अहंकार पर पहुंचकर अंधकार में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, गुम हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। मित्रों, हर वर्ग में, हर कार्य क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों से काम करा के और दाम दिलाकर नाम और इनाम अपने लिए बटोरते हैं और उन्हीं द्वारा सत्ता हत्या कर उन्हीं पर हुकूमत करते हैं। मित्रों, जिन लोगों ने उनको नाम मान सम्मान दिलाया उन्हीं पर ये राक्षस लोग हुकूमत करते हैं, उन्हीं का हत्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। भूल गए कि उन्हीं के कारण उनको ये राक्षस लोग को इतना पावर, इतना शक्ति, मान सम्मान मिला हुआ है, ताकत मिला है। कहां से? अगर वे गरीब लोग, जनता लोग इनको नहीं बैठाए तो क्या करेंगे? ये सब पक्का चाटेंगे, दौड़ेंगे गधे की तरह रास्ते पर भीख मांगते। मित्रों, ये सब इच्छाओं के गुलाम हैं, गुलाम है ये सब। इसी प्रकार व्यक्ति के मन में अनगिनत इच्छाएं और तृष्णाएं हैं, वो यूं ही उन इच्छाओं का गुलाम बनकर स्वयं को छका देता है और अपने जीवन के मूल्यवान क्षण रूपी हरी मोती गंवा देता है। मित्रों, और अंत में जब उसका शरीर चेतना विहीन होकर लकड़ी के अर्थी पर पड़ा होता है, तब लोग जो जीवन भर अपने स्वार्थ के खेल तमाशे करते रहते थे और उसे हैरान, परेशान, नादान और बेवकूफ बनाने में लगे रहते थे, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, सबका यही गत है। मित्रों, तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है, कहकर ये सब दिखावे का विलाप करते हैं। लोग चिल्ला चिल्ला कर फिर रोते वहां पर उस व्यक्ति के लिए जो परलोक सिधार दिए हैं या नरक को सिधार दिए हैं, रोते हैं चिल्ला कर दिखाने के लिए। इच्छाओं रूपी वे गुलाम घोड़े पर चढ़ना तो मनुष्य तब भी नहीं छोड़ता है। मरने के बाद भी लोग इससे करते होंगे और जो अभी नहीं मरे वे वहां दिखाते हैं, क्या नाटक करते हैं वहां पर चिल्ला चिल्ला कर। शायद आप उनमें से एक भी हो, है ना? नहीं करना, गलत बात है। मित्रों, तो धन्य है।

वे थोड़े से व्यक्ति जिनकी बुद्धि इन बातों या लफड़ों से आजाद होती है, उनका ही जीवन बड़ा हल्का और सुखमय होता है। वे ही सभी प्रकार की गुलामी की जंजीरों से छूटे हुए होते हैं। वे किसी के दबाव, लगाव, झुकाव और धमकाओं में ना आकर अपनी वैचारिक स्वतंत्रता के धनी होते हैं और स्वयं प्रभु द्वारा बताए मार्ग पर मित्रों वे खटके चलते हैं। उनका जीवन सच्चे अर्थ में अंत सुखाए और बहुजन हिताय होता है, बहुजन हिताय होता है। परंतु प्रश्न उठता है कि हमारा जीवन इन सभी लफड़ों से फारिंग कैसे हो, छुटकारा कैसे मिले। तो मित्रों, हम इन सब धंधों से छूटे कैसे, गुलामी, सुलामी, गुमनामी, नीलामी और बदनामी के चक्कर फेर से हम निकले कैसे, कैसे निकले। दलदल के दाग घावों को धोकर हम नए नवेले बने कैसे, कैसे बने। खुद मस्ती में, नारायणी नशे में, ईश्वरीय आनंद में झूमे और झूले कैसे मित्रों। राहत को सांस और सच्चे सुख का साधन पाए हम कैसे, कैसे। इन सब के बारे में आपको मैं आने वाला अमृतवाणी में बतलाऊं। आज आपने दिल एन सुने हैं, आने वाला अमृतवाणी में आप दिल तो ही सुनेंगे। जरूर कृपा कीजिए श्रवण करने के लिए मित्रों, मगर ये ना भूलना कि बुरा किसी का मत करो, बुरा बुरे का फल आगे तेरे आएगा, आज नहीं तो कल। भाई बहनों, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो, इसी में आपका कल्याण है प्यारे प्यारे भाई बहनों। और शरणागत भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, बल्कि उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। ये है शरणागत भक्त की आदत, वो भजन नहीं करेगा, अपने आप भजन होने लगेगा। मित्रों, मैं बार बार ये भी कहता हूं कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं।

मैं आपका गोपाल परदेसी बाबा, घर चलना है। कहाँ, कौन सी घर? अरे सभी तो जा रहे हैं प्यारे, देख नहीं रहे हो? सभी गरीब दुखिया बलवान धनवान जो भी हैं सब जात हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे सब लाइन में जा रहे हैं। उसी लाइन में आप और मैं भी खड़ा हुआ हूँ। एक न एक दिन पहुंचेंगे वहां कोने पर, उस चौराही पर, मोड़ पर। कहाँ जाना है मित्रों? पिछले बार मैंने आपको बतलाया था इसके बारे में ना। तो प्रश्न उठता है कि हमारा जीवन इस सभी लफड़ों से कैसे छुटकारा मिले, हम कैसे गुलामी, सुलामी, गुमनामी, नीलामी और बदनामी के चक्कर फिर से हम निकले कैसे मित्रों? खुद मस्ती में, नारायणी नशे में, ईश्वरीय आनंद में झूमे और झूले कैसे मित्रों? ज्ञान तो बहुत है, अपार अतः है, परंतु इसके चार शब्दों में इसका सार भरा हुआ है। अब घर चलना है, इनमें से अब शब्द समय का, घर शब्द स्थान अथवा ठिकाने का, चलना शब्द पुरुषार्थ का अथवा लक्ष्य का तथा गति का, और है शब्द स्मृति, स्वीकृति, निश्चय और अस्तित्व का वाचक है। तो मित्रों, घर वो है जहां परमात्मा रहते हैं और जहां से ये आत्मा इस परदेश में आई है, इसलिए मेरा नाम भी परदेसी बाबा है, परदेश से हम भी आए हैं मित्रों। तो वो आत्मा जो इस परदेश में आई है, इस शब्द से आत्मा, परमात्मा और परलोक की स्मृति आएगी मित्रों। परमात्मा की याद कायम होगी, निराकारी स्थिति होगी, पांव पृथ्वी के ऊपर उड़ जाएगी और आत्मा फरिश्ता बन उड़ती कला में चली जाएगी तथा स्वयं को प्रकाश के लोक में शक्तिशाली और ज्योति अनुभव करेगी। इससे उसकी स्थिति कर्मातीत हो जाएगी मित्रों। अब शब्द की स्मृति से बीती को बीता समझेंगे और घर शब्द से विकारी दुनिया को न जीती समझेंगे। तो मित्रों, अब शब्द के प्रभाव से, यानी अब शब्द के प्रभाव से पिछले संस्कारों को एक ओर रख अब हमें जो कुछ करना है उसकी बात सोचिए मित्रों। अब शब्द की याद आने से हम टाल मटोल छोड़ देंगे और आज की बात कल पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसी क्षण से ही आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। चलना है मित्रों। तो चलना है शब्दों से आलस्य और अलबेलापन भाग जाएगा, हम कर्तव्य कर्म करने में लग जाएंगे और समय रूपी धन को व्यर्थ न गंवाकर हम ज्ञान धन और योग बल को अर्जित करने में लग जाएंगे मित्रों। और है शब्द से हम निश्चित बुद्धि बनेंगे और करना है जो अभी कर लो, ये वक्त जा रहा है, समय जा रहा है। इस उक्ति के अनुसार वर्तमान काल में पुरुषार्थ करने लग जाएंगे मित्रों। इस प्रकार के निरंतर पुरुषार्थ से हमारी अवस्था कर्मातीत बिंदु स्वरूप अथवा बीज रूप हो जाएगी और शक्तिशाली बन जाएगी मित्रों। तो हमें हर एक चीज
सोच समझकर समय के अनुसार। जीवन दर्शन या धर्म दर्शन में चार ही मुख्य बातों की विशेष चर्चा होती है मित्रों। पहले, क्या है क्या नहीं है, अथवा सत्य क्या है असत्य क्या है, अस्ति और नास्ति कोई वस्तु है या नहीं, है शब्द पॉजिटिव यानी सकारात्मक है। मित्रों, ये इस बात की स्वीकृति है कि चलना है, ऐसा हमारा निश्चय है। मित्रों, इस शब्द से ये विदित होता है कि व्यक्ति जीवित है, सतर्क है, चेतनाशील है और बुद्धि से सोच समझ कर कह रहा है शब्द। मित्रों, है शब्द वर्तमान का वाचक है, मतलब हेदन है, नु है, अभी है, तेह वोर्दखबा, ये है वर्तमान का मतलब। तो मित्रों, इससे मन का उपस्थित होना स्पष्ट होता है कि मन है, शरीर में है। तो ये मन के अनुपस्थिति यानी होना का वाचक नहीं है, अनुपस्थिति का वाचक नहीं है। अतः ज्ञान पूर्वक व्यक्ति कहता है कि हाँ हाँ हाँ, अब घर चलना है, चलना है, चलना है, घर चलना है, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। मित्रों, न चलने की तो बात ही नहीं है कि चलना नहीं है, हाँ चलना है। तो दर्शन में दूसरा प्रश्न, दूसरी जिज्ञासा होती है स्थान संबंधी, जो जो चीज है वो कहाँ है। उदाहरण के तौर पर, यदि परमात्मा है तो कहाँ है, परलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक यदि है तो कहाँ है। मित्रों, कहाँ है। इसी प्रकार यदि हमें चलना है तो जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, ये बात हमें मालूम करना है। मित्रों, आपसे हम कह रहे हैं ना, चलना है, घर चलना है, तो कहाँ, कैसे। मित्रों, यदि गति अथवा सदगति होती है तो आत्मा चलकर कहाँ जाती है। गति का अर्थ तो चाल, चाल अथवा चलना है। परंतु प्रश्न उठता है कि आत्मा चलकर कहाँ जाती है या उड़कर कहाँ जाती है। क्या वो किसी अन्य लोक में जाती है या परमात्मा में लीन हो जाती है। अतः घर शब्द स्पष्ट करता है कि आत्मा का अपने घर जाना ही उसकी गति है, और घर ऊपर ब्रह्मलोक है जहां आत्मा शरीर रहित होकर और पवित्र होकर तथा लगाओ, झुकाओ, खिंचाओ, तन मन मुटाव से रहित होकर जा सकती है, रहित होकर ही जा सकती है। तो मित्रों, इस प्रकार घर शब्द स्थान विषयक प्रश्न का उत्तर है। घर शब्द से ही शांति और राहत मिलती है, क्योंकि घर ही तो ऐसा ठिकाना होता है जहां व्यक्ति ना तो बेगाना होता है ना अनजाना। लोग घर लौट कर जाने की तो इंतजार में रहते हैं। मित्रों, तो घर जाना है, समझ रहे हो ना हम क्या बतला रहे हैं, घर जाना है। इसमें किसी को इतराज यानी आपत्ति क्या है, नहीं होना चाहिए। माता पिता से मिलना तो सभी सोचते ही हैं कि हम अपने मैया बप्पा से मिलें, हैं? दर्शन का ये प्रश्न भी हल हुआ। मित्रों, तो दर्शन का तीसरा विषय समय से संबंधित होता है। वस्तु, देश
और काल, ये तीनों आवश्यक प्रश्न है हर एक के पाठ का अथवा अस्तित्व का। देश और काल तो होता ही है मित्रों। अब शब्द काल सूचक है। शब्द जो है अब काल सूचक है। इसका भाव यह है कि समय आ पहुंचा है मित्रों। सायन काल सभी पक्षी अपने अशियाने की ओर लौटते हैं। दफ्तरों में कार्य करने वाले लोग शाम को घर लौटने की तैयारी कर चल पड़ते हैं मित्रों। इसी प्रकार अब आत्माओं के भी घर यानी परम धाम लौटने का समय है। अब शब्द काल के प्रश्न को सुलझाता है मित्रों। हमें जन्म जन्मांतर कई प्रकार के पातालों में जाकर या अनेक प्रकार की योनियों में पड़ने का बाद नहीं, बल्कि अब जाना है। इधर उधर नहीं भटको, गधा बिल्ली मूस कुत्ते नहीं बनना है, सीधा घर जाओ। तो मित्रों अब चौथी बात। दर्शनों में चौथा विषय कर्म या क्रिया का होता है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस विषय पर धर्म या दर्शन प्रकाश डालता है। अकर्मण्यता की बजाय दर्शन कर्म की ओर प्रवृत्त करता है। और कर्मों में से कौन से प्रकार के कर्म अच्छे या बुरे हैं, धर्म या दर्शन इसी की ओर ध्यान आकर्षित करता है मित्रों। वो कर्मों के फल की भी चर्चा करता है। अतः घर चलना है, इस बात पर जोर देता है कि वो रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं। जानते ना एक गाना है, तो रुकना नहीं है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते भी घर की ओर ही जाना है। अर्थात ऐसे कर्म नहीं करने जो घर की ओर ले जाने की बजाय विपरीत दिशा में ले जाए, यानी नरकों की ओर। पथ पर चलना है, कुपथ पर नहीं। पथ पर चलो, कुपथ पर नहीं, खराब रास्ता पर नहीं। पवित्रता का पालन करना और अशरीरी बनना घर ब्रह्मलोक जाने के लिए जरूरी है मित्रों। अशरीरी मतलब आत्मा बनकर अब फिर घर जाओ, चलना है। इस बात का सूचक है कि पवित्रता शांति और निराकारी स्थिति को बनाए रखना है मित्रों। इस प्रकार अब घर चलना है, ये दर्शन दिग्दर्शन का सार है। ये व्यावहारिक भी है और परमार्थिक भी मित्रों। चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य व्यवहार करते इस बात की यदि स्मृति रहे कि अब घर चलना है, तो आत्मा ज्ञान गुण शक्ति संपन्न होकर कर्मतीत स्थिति को प्राप्त कर लेगी। मगर हम तो डरते हैं, बिहान मर ना जाए, बिहान मर ना जाए, अरे बाप रे, सब छूट छाट जाए, है ना। तो उसके पुरुषार्थ में त्याग और तपस्या दोनों ही समाई होगी। करो ना करियो तो भी जइयो, तो इससे अच्छा है कि कुछ करो। समझो मित्रों, इसमें बेहद का वैराग्य भी होगा। वो स्वयं को मेहमान भी समझेंगी और महान भी बनेगी। वही आत्मा मित्रों पुरुषार्थ का ये सहज सरल और
संक्षिप्त तरीका है, समझो तो, और ना समझो तो फिर लगे रहो जैसे भिड़े हो, चलते रहो। मित्रों यही वो विधि है जिससे सिद्धि होती है। इससे ही ये ध्यान रहेगा कि दुनिया से दिल नहीं लगाना है, परमात्मा को दिल में बिठाना है। मित्रों दुनिया से दिल नहीं लगाना है, नहीं इसी में फंसे रहियो, रोते गाते रहियो, तो आत्मा को अपने घर जाना है, वो है परम धाम, वही है तुम्हार घरवा है। तो समझो तो ठीक है, ना समझो तो आप जानो, आपका काम जाने। मित्रों

मित्रों, जरूरी नहीं है कि मुझे सभी लोग प्यार करें। मेरे लिए जो वादा महत्वपूर्ण है वो है सही लोगों द्वारा प्यार पाना। मित्रों, मैं आपको हर दिन के लिए एक फूल और एक मैत्रीपूर्ण शब्द, एक प्रसन्न मुस्कान और आपके

लेकिन सबसे ऊपर एक अंगूठा यही आशा से कि आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मित्रों, आपके आंसुओं के लिए एक अलिंगन यानी कुनिफल, आपके लिए एक अलिंगन प्यार और आराम से भरा है एक अलिंगन, क्योंकि कभी कभी ये जरूरी होता है मुश्किल की घड़ियों में एक झप्पी, एक अलिंगन, एक कुनिफल इंसान को जरूरी पड़ जाता है। मित्रों।

सज्जनों, उस परिवार के बारे में चिंता ना करें जो आपको अनदेखा करते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे जाने दें और उन लोगों से प्यार करें जो हमेशा आपके लिए मौजूद है, तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। मित्रों, और जो परिवार या रिश्तेदार मेरे लिए गलत विचार रखते हैं, उन्हें मैं अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता। परिवार एक दूसरे की मदद और सुरक्षा के लिए बना है, एक दूसरे को नष्ट करने के लिए नहीं, जैसे आप करते हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहना, अच्छाई करते रहो। मित्रों, ये आपके जीवन में बहुत कल्याणकारी साबित होगा।

मित्रों, यदि आप अतीत को पीछे नहीं छोड़ते हैं तो ये आपके भविष्य के उस प्रेम को नष्ट कर देगा जो आज आपको देना था, न कि जो कल था। वो तो बीत गया, बीत गया। मैं अब वो नहीं रहा जो मैं था, जो सब कुछ किया करता था, जो दूसरों को मुझसे अपेक्षा थी। अब मैं वही करता हूँ जो मैं खुद की सुनना चाहता हूँ और अपने दिल की सुनता हूँ। तो अगर आप मुझसे कहें कि मैं बदल गया हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मैंने उस तरह जीना बंद कर दिया है जैसे आप चाहते थे। मित्रों, जैसे आप चाहते थे इस तरह आपको भी जीना चाहिए।

अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है।

संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां वे समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी राधा

ऐसी धारणा है कि पुण्य करने से सुख प्राप्त होता है और पाप करने से दुख मिलते हैं। लेकिन पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या, दुख क्या है, इस भजन में इस बात को बड़ी भली भांति समझाया।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां व समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी रा

नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। काफ़ी लोग हैं जो आज पूजा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ फूल अर्पण कर रहे हैं। आज भी शिवा का दिन है। जो जो लोग शिवा के याद करते हैं, हर एक के लिए ये मैंने आप लोग की सुनाया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम चलाएंगे एक दो शिवा के कुछ भजन है जो आप लोग के मैं सुनाऊंगा। भूल मत जाना, मैं हूं आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो कुछ देर सिर्फ शिवा गणेशा और इनका भजन मैं आप लोग के सुनाऊंगा। और हर एक को शुभ दिन हो और शुभ सुबह हो। हर एक का दिन भगवान ऐसे करे कि आज काफ़ी अच्छा दिन आप लोग के हो। ठीक है दोस्तों, हम चलाते हैं और चलते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में शिव जी का कुछ भजन है जो हम आप लोग के सुनाना चाहते हैं। अभी क्या भजन आपने सुने हैं, जो भी आज इस वक्त अपना पूजा पे ही अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, फूल को अर्पण करते हैं हर एक के लिए ये सब भजन हम चलाते हैं। और एक शुभ सुबह हो, शुभ दिन हो, यही मैं कह रहा हूँ। और पूरा टीम की तरफ से, फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, हम चलते ही ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हम चलते हैं ओम जय शिवा ओमकार।

कदम हैं और हम आप लोग के मिल के सुनेंगे कुछ शिवा के भजन हैं और कुछ अभी हम गणेश के एक दो भजन चलाएंगे। चलो हम सब मिलके कुछ भजन करते हैं, जो भी अपना पूजा पे है या अपना फूल अर्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हर एक पूजा करने वाले के लिए इस भजन है।

हो रहा है उसे बचा के रखना मालिक, हर एक के दुख दूर करना, तंदुरुस्ती दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, शक्ति दे के लोग अपना चीज कर सकते हैं और हर एक बीमारी से बचाइए भगवान। जो भी कुछ करना चाहता है हर एक चीज पूरा कीजिए, आप ही है, आप तो है दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया के रखवाला आप ही है, शिवा ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही लोग है जो इस दुनिया के चला रहे रचा रहे हैं, जैसे चाहते हैं वैसे आप रचा रहे हैं, दुनिया को बना रहे हैं और हर एक के घर घर के जो प्रॉब्लम है उसे दुख करना सोल्व करना मालिक आप ही है, यही मांगता हूँ। हर एक बीमारी से बचाइए। हम आप लोग के लिए चलते ही गणेश के मंत्र है, विष्णु का मंत्र है, लक्ष्मी का मंत्र है, देखा जाए शिव मंत्र है, दुर्गा मंत्र है, हनुमान का मंत्र है, यही सब है जो दुनिया में दुनिया चलाते हैं, इससे बड़ा और कोई नहीं है, इन सबसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, यही है जो दुनिया चला रहा है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मालिक आपसे हर एक को बचा के रखना, संभाल के रखना, इंसान की जिंदगी बहुत गिनती है मालिक, बचा के रखना, हर एक बीमारी से बचा के रखना।

जी हाँ दोस्तों, ये था गणेश का मंत्र। हम सब अंदाज नहीं लगा सकते ही कि इसमें कितना ताकत है। बहुत ही ताकत है, बहुत ही ताकत है। ये मंत्र को हर एक को जानना चाहिए। हमारा हिंदू भाइयों जो है इसे जानना चाहिए। इसमें वो ताकत है जो हम कह नहीं सकते हैं। चलो दोस्तों, हमें चलते हैं हरिओम शरण की तरफ।

दोस्तों, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, हरि ओम शरण की आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम आप लोग कले चलते विष्णु मंत्र से, इसमें क्या ताकत है हम सब मिलकर सुनते हैं। मैं हूं आपकी खिदमत में अनिल सारजू।

सच बात है तेरा लीला हमेशा न्यारी रहेगी। ये था ब्रह्मा विष्णु महेश, और जैसे आपने सुना इस भजन को, जो सुन रहा है वो समझ भी रहा है, यही सब है जो दुनिया चलाने वाला है। दुनिया हम नहीं चलाते हैं, दुनिया ये लोग चलाते हैं, और इससे बड़ा और कोई नहीं है। हमें मानना चाहिए कि यही है दुनिया के रखवाले। हम सदा अपने हाथ जोड़ के इनके पैर पकड़ते इस दुनिया को संभाल के रखना, भगवान यही मांग है मेरा। चलो हम आगे चलते हैं, हरिओम शरण की आवाज़।

अल्लाह मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा लो। मूवी सिकंदर निगंतिन अख्तन सस्तका, जो इसका जो म्यूजिक बजाया गया है शंकर जय किशन और हसरत जयपुरी का, जो हाथ है कलम जो से लिखा गया है वो हसरत जयपुरी है। ठीक है दोस्तों, मैं अगले प्रोग्राम को, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, दम मारो दम। चलो हरे रामा हरे कृष्णा जीनातमन। जीनातमन ने काम किया है देव अनंत जीनातमन और आशा भोसले की आवाज से दोस्तों। और देखा जाए ये भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और म्यूजिक सजाया है एरदे बिरमन। चलो मिलके सुनते हैं एवर ग्रीन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो से।

दोस्तों दम मारो दम, अभी आप सुने थे दम मारो दम, और हम आपको ले जाते हैं इस वक्त रंबा हो हो हो शंबा हो हो। चलो हम सब सुनते हैं मूवी अरमान, और हम मिलके इसे सुनेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या नहीं है।

जहां रंबा हो शंबा हो मूवी अरमान उषा उत्तम पपी लहरी और इंजीवार आप सुन रहे थे दोस्तों। चलो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ याद आ रहा है, देखा जाए तो पपी लहरी का ये डांस नंबर है, याद आ रहा है पपी लहरी है डिस्को डांसर का ये जो गाना है और लाइरिक से अनजान जो इस हाथ चलाया है और म्यूजिक पपी लहरी का है। चलो हम आप लोग सुनाते ही डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, हो जाए तो बल्ले बल्ले दिलर मेहंदी का आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम चलेंगे बोले तारा रा रा रा रा रा रा। चलो सुन के देखे, देखते ही मिलके हम आप लोग सुनाते हैं। देखा जाए तो बोल तारा रा रा रा रा भी मैंने गाने को देखा है और यहाँ है वो गाना, हम आपके सुनाते हैं बोल तारा रा रा रा। ये क्या हुआ यार, देखा जाए तो कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें। देखा जाए इस पे तो है कुछ और, हम इस गाने को रखते हैं, तो ऐसे कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें।

अरे बोलो तारा रा रा रा, दिलर मेहंदी को भी आप सो रहे थे, चलो हम चलते हैं। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो क्या बन जाए।

0: दोस्तों, हर एक को हम यहाँ से राम राम कहते ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह हो और खुदा हाफिज हो। हर एक को जुम्मा मुबारक हो। हर एक जो हमारा साथ दिया है हम उनको राम राम नमस्कार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुने हैं, पसंद भी करे हैं। काफ़ी लोग हैं जिसका फरमाइश से मैं देंस तक के ज़रूर सुनाऊँगा। यहाँ से हम ज़रूर विदाई लेंगे। देंस तक के मंगलवार को हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। यहाँ से हम न्यूज़ रखते हैं, कुछ बयान है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम द्वारका ले लेगा राजन द्वारका हमारा कुलेखा जो प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। राम राम नमस्कार और खुदा हाफिज हो।
1: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
0: हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रोज़ की तरह, हमेशा की तरह आपसे आज भी होगी कुछ प्यारे प्यारे बातें और सॉन्ग्स हम चलाएंगे जो आपको पसंद है। जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे और हर एक सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार अदाए बरस और सत्यकाल हो। मैं हूँ आपके खिदमत में अनिल सारजू, जो आपके साथ देंगे और कुछ पुराने पुराने गाने हम आप लोग के ज़रूर सुनाएंगे। जहाँ पे जिस घर में दुख है या मातम है, पूरा फाहुन टीम उसका दुख में शामिल है। जहाँ पे खुशी है वहाँ पे भी हम साथ हैं। दुख और सुख में हर एक को सदा साथ देना चाहिए, वैसे हम भी आपके साथ हैं। चलो दोस्तों, हम प्रोग्राम को आप चलाएंगे। एक घंटे तक हम कुछ हिले मिले जुले गीतों से आपको जरूर सुनाने वाला है। मिलके हम सब सुनेंगे आज का प्रोग्राम और हर एक जरूर इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन के रख चुका है। मूवी हम जफर, जिसमें जितेंद्र शर्मिला टैगोर ने काम किया, लता मंगेशकर और मुकेश ने इस गाने को गाया है। देखा जाए इसका म्यूजिक जो बजाया गया है वो ही आनंद बख्शी और लाइरिक्स आनंद बख्शी और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी। हम मिलके सुनते हैं किसी राह पे किसी मोड़ पर। इसमें थोड़ा से कुछ गलत हो गया है, देखा जाए तो देखते क्यों आवाज नहीं आता है इसमें से।

0: सभी को राम राम, नमस्कार और ढेर सारा दुलार पहुंचे। जहां तक ये आवाज़ पहुंचे वहां तक हमारा पैगाम पहुंचे और ढेर सारी मोहब्बत पहुंचे। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपकी खिदमत में अनिल सरजू, जो कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोग के सेवा करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन करके लाए हैं, कुछ पुराने गाने हैं, और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर आज का रेडियो प्रोग्राम फाहून द्वारा ज़रूर पसंद आएगा। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैंने चुन करके रखा है मूवी फिल्म हम सफ़र के एक ऐसा गीत है जो लता मंगेशकर और द नाइट मुकेश ने गाया है, जो करोड़ों का दिल जीत चुका है, जीत लिया था, जीते जाते भी है। क्या आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर का, आवाज़ है किसी राह में किसी मोर पर। लता मंगेशकर मुकेश लाइरिक्स, जो हाथ और कलम चलाया गया है, जो सिहाही से लिखा गया है, वो आनंद बख्शी है। म्यूजिक सजा करके हम लोग तक लाया है कल्याण जी, आनंद जी। हम आप लोग के मिल के सुनाते हैं, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हर एक के लिए ये गीत मैं पेश करता हूँ। नामोस रेडियो फाहून।
1: मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
2: हाँ हाँ, सुनाओ।
1: अरे अरे, अभी नहीं, क्या तुम भूल गए हो? तुम छुप कर जा रहे हो।
2: खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
1: खुशी? किस बात की खुशी?
2: न जाने क्यों।
1: राजू, तुम बहुत अच्छे हो।
2: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
1: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मूवी मेरे हम सफ़र, किसी राह पर किसी मोर पर। चलो दोस्तों, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, रख दिया है आपके लिए, मूवी हीरा हीरा हीरा तमन्ना एल्बम, मूवी हीरा तमन्ना है और सिंगर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिर से लाई दीक्षा आनंद बख्शी की और देखा जाए म्यूजिक है लेबल शरगमा। चलो दोस्तों, हम आपके सुनाते हैं जिसमें काम किया है देवानंद और जीना तमन्ने। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

जादसो मूवी हीरा पन्ना किशोर कुमार और लता मंगेशकर के आवाज है ब्याह सुर रहे थे दोस्तों आनंद बख्शी का लिरिक्स और आप जानते ही राहु देव परमन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों हम आगे चलते हैं प्रोग्राम आप है तो हम है आप नहीं तो हम नहीं है और आप सब चून है द एफगिन लव फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पे मैं हूँ आपके खिदमत में अनिल जारजू। हम आगे प्रोग्राम चलाते हैं मुकेश जी का एक गाना हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं जो प्यार से गाया है जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा मूवी कति पतंग तक का है और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर है एरदे बर्मन। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और हम आपके नाम करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम को सुनते ही जितने गाना या गीत हम चलाते हैं बस आप सबके नाम है। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे ही सुनते रहना। ये गीत भी आप लोग के नाम है मूवी कति पतंग के जिसमें जितेंद्र आशा परीक ने काम किया है।

0: बालमा।
1: जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग। नीलकंठ एनन सैफन तक का ये फिल्म है जिसका आपने भी गीत को सुना है, और जो जो सुनता है हर एक गीत जो मैं चला रहा हूँ बस आप सबके नाम है। चलो दोस्तों, हम अगले सांस को लगा चुके हैं अगले गाने को, और देखा जाए देखिए तो कौन मूवी दो कल्याण, दो कल्याण नीलकंठन शस्त्र का है यार। और वो देखा जाए तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, कभी कभी हो जाता है ना, नज़र भी खफा हो जाते हैं लोग, लोग से जुदा हो जाते हैं तो क्यों खफा नहीं हो सकता है। पद्माश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का आवाज़ है, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हम आपको सुनाते हैं, मिल के सुनेंगे तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले एक हंसती की आंचल का मुझे प्यार मिले मुकेश की आवाज थी। चलो दोस्तों आगे ले चलते ही, ना जाने क्या हूँ, बहुत विशाल गाना है यह गाना है लता मंगेशकर का, मूवी दर्द है नहीं कंती एनन तख्त का, ना जाने क्या हुआ जो तुम छोड़ लिया छू लिया। ये गाना हम सोच रहे सब कोई जाने और सब कोई के मुँह लगे, लता मंगेशकर का आवाज़ है और सब कोई सुनो खोई मिल के फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चोर है दोस्तों, मिल के सुनेंगे न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। मूवी दर्द 1981 का, जिसमें हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ने काम किया है। तो चलो दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं मूवी प्रोफेसर 1986 का, जिसमें जामी कपूर और कल्पना ने काम किया है और गायक और गायिका है पद्मश्री मोहम्मद रफी और दक्षिण लता मंगेशकर। म्यूजिक शंकर जयकिशन और लायरी से सई लेंद्रा।

जी हाँ प्यारे सुनने वाले, मैं चली मूवी प्रोफेसर 1962 का। चलो आगे ले चलते, दूरी ना रही कोई, लता मंगेशकर की आवाज़ है। और देखा जाए जी हम दोस्तों, लता मंगेशकर म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लायरी से कफीन आज़ाद मुत के जो लिखा गया है, हाथ और कलम उसी ने चलाया है। चलो मिलके सुनते हैं रेडियो फोन के जरिए से

लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू मी शी इज इथीरियल, समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ, नो लेस देन अ गॉडेस, अ देवी। दिस वन नेम इवोक्स अ मिलियन फीलिंग्स इनसाइड मी। आई हैव कोल्ड फीट, वीक नीज, अ नॉट इन माई स्टमक, आई स्माइल ऑन माई लिप्स एंड टीयर्स इन माई आईज। इन अदर वर्ड्स, आई फील अलाइव व्हेन आई हियर दिस नेम, लता।

जी हाँ दोस्तों, तुम मुझ में समा जाऊँ, मैं तुझ में समा जाऊँ। द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर की आवाज़ थी और कर्तव्य मूवी का नाम है और रेखा और धर्मेंद्र पाजी ने इसमें काम किया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के सुनाते हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है असर।

0: तेरे इष्ट का मुझ पे हुआ है असर। आशा भोसले पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज से मूवी नागिन निकली सेशन ज़ैफ़न तक का है। ठीक है दोस्तों, मैंने वक्त से पूछा मेरा क्या कसूर था। वक्त हंस के बोला कसूर तो कुछ बड़ा नहीं था, बस तूने हर किसी को दिल से अपना समझ लिया और जिए इस दुनिया में सबसे बड़ा कसूर होता है। जहां हर रिश्ता दिल से नहीं निभाया जाता है, हाय तुम दिल से जीते रहा है और लोग मतलब से याद करता है, दिल से नहीं। ये ऐसा होता है हमारे प्यारे सुनने वाला, शायद बोलने में कुछ गलत हो गया, ये ऐसा होता है। आपकी खिदमत में मैं हूँ अनिल जारजू और आप सब द एफगे लॉ फाहौन हिंदुस्तानी पे चून है। देखा जाए तो अभी हम आप लोग के
1: एडवोकेटन का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Faro FM.nl.
6: Dit is het Faro Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. En dat is hoger dan in 2024, toen was het 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders zijn hiervan getroffen. 3 maanden voor het busongeluk op een Vlaamse spoorwegovergang in Bruggenhout was al geklaagd over de chauffeur. Een oud-kindbegeleidster meldde dat de kinderen klaagden over agressief rijgedrag en misselijkheid. De man keek tijdens het rit op zijn telefoon, negeerde andere weggebruikers en veroorzaakte bijna een ongeval. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Tot slot nog even het weer. Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het Midden-Oosten en Noordoosten kan een actievere buienlijn ontstaan met kans op zwaar onweer. Windstoten tot 75 km per uur. Op de natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws op Faon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Faon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Har dil se hamara nata hai, har dil se hamara rishta hai. हर रोज़ की तरह हमसे तुमसे होगी प्यारे प्यारे बातें और कुछ प्यारे प्यारे गाने हम आप लोग के सुनाने वाला है। जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, जहाँ तक लोग मुझे सुनते हैं, हमारा प्यार भरा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे। आप सब जानते हैं हम सब चून है द एवरग्रीन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे। हम आप लोग के आज चलेंगे कुछ मूवी, एक मूवी है जिसे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और देखा जाए हर खुशहाली और रास्ता के हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे। आज मेरा प्रोग्राम ऐसे रहेंगे, हम हर गाने सुनाएंगे आप लोगों के, अच्छे अच्छे गाने जो हरियाली और रास्ता में गाया गया है। तो हम ले चलते हैं, पहला गाना लेके चलते हैं हरियाली और रास्ता के, नहीं के जिसमें मनोज कुमार मालाजीना ने काम किया है, शंकर जय किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं, हम आप लोग के सुनाते हैं, चलो मिलके सुनते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का, जिसपे मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।
1: आख

जय दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेगेटिव ट्विन सिस्टर का फिल्म में मूवी, मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जय दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे। एक था राजा एक था रानी, नेकदिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो हमने चलते हैं दोस्तों हरियाली रास्ता का नेकदिन टू इंसेस्ट का फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता 1962 का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा। करोड़ों का दिल जीतने वाला मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का ये निकाला हुआ गाना है, 1962 का है। जे फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मूवी।

0: से।
1: जी हाँ दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक थे। एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलके सुनते ही परवानों की रात। आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं कहीं तो इस शस्त का है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप जो रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का, आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नेहंतिन ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही मूवी हम आप लोग के लिए चलते नेहंतिन वेफन शस्तक में, जोहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज है दोस्तों, सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश, ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है, कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नेहंतिन वेफन शस्तक में, आँखियों का नूर है तू।

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एल महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम किया इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर महमूद इन गोवा निकले फैंस तक में। और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखा में बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे, उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाए से कल्याण जी आनंद जी है, और वही जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन न सुन ली है और बहुत मन की सुनत, काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

हाँ यही तो प्यार है, दिल संभल जा सरा, दिल संभल जा सरा, फिर मोहब्बत करने चला। ये दिल जो है ये क्या संभलने वाला है, ये दिल जो है कभी नहीं मानता है और दिल भी कभी नहीं भरता है।

लिए दिल को चाहे मनाओ ये कभी नहीं मानते हैं दोस्तों, छूकर मेरे मन को किया तूने किया इशारा, अमिताभ बच्चन का फिल्म है और अमिताभ बच्चन दोस्तों एक बड़ा स्टार है, आज तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं और कई तरह के प्रोग्राम उसका भी टेलीविजन पे रहता है। तो अमिताभ बच्चन का उम्र फिर तक यार इस देश में बने रहो, 11 अक्टूबर 1923 तक में इनका पैदाइश हुआ और उसी का फिल्म का एक सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ और फिल्म याराना है और फिल्म याराना का गीत है छूकर मेरे मन को, किशोरदा के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। अक्षय कुमार और करीना कपूर या करीना खान दोनों ने काम किया है फिल्म एक दिल रुबा है। पद्मसी उरित्रायन के आवाज में आप गीत को सुनेंगे, दिल करता है तुझे अपना बना लूं।

ये दिल का कहानी दोस्तों, मैं दिल की कहानी नहीं लेके आया, मैं दिल का लय सभी ने बनाया, लेकिन हर एक दिन जो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तो दिल आ जाता है। ये दिल पर क्या गुजरता है आप जानते हैं, और ये दिल जो है कभी नहीं मानते हैं। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, ये दिल तो दिल है लेकिन कभी नहीं मानते, छोटा सा दिल है। जब प्यार हो जाता है तो चाहे प्यार मिट जाता है लेकिन ये बात दिल में जाकर समा जाता है और हमेशा के लिए दिल में रहता है, ये दिल से कभी नहीं निकलता है। दिल तो है दिल।

दिल तो है दिल, दिल का एक बार क्या चीजे, हम यार है तुम्हारे अलका याग्निक उदित नारायण दोनों के आवाज़ में आप सुनेंगे। हाँ मैंने भी प्यार किया, फिल्म का नाम है ट्वी डिशन ट्वी में

मुद्दई लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुनने वालों की खिदमत में अदाब अर्ज़ नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है, जून की 2 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाओ रेडियो के फूल टीम की तरफ से मुबारकबाद और बधाई पेश हो। जो लोग इस वक्त सफ़र पर जा रहे हैं, सफ़र मुबारक हो। जो लोग गैर मुल्क से यहाँ नीदरलैंड में आए हैं, उसको मैं खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम सब आपके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या इंतज़ार कर सकते हैं? इश्तिहारे, कुछ मिले जुले नखमे नए और पुराने, सब मिला जुला कर कोशिश करूंगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुदमई बीबी साहिबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूं कि जिस तरह से हम प्रोग्राम को पेश करेंगे, जरूर आपको पसंद आएगा। चलिए मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सेलेक्शन आप सुनेंगे।

अभी आपने मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सिलेक्शन पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से सुन रहे थे। रफ़ी साहब ने अपने ज़माने में 28,000 गाने गाए हैं, लेकिन ये गाना जो अभी हमने चला है ये मेरा फेवरेट गाना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये गाना पसंद आया हुआ होगा।

ये दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना। अभी आपने आशा भोसले और साथ में मुकेश से गीत को सुना रेडियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में।

और दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने सादा सरगम और मोहम्मद अजीज से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहोन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। इसमें देखा जाए तो 5 मिनट बाकी, 1:30 बजने में आप रेडियो फाहोन पे चुने। हमारा पता है यूहा रिंकर स्काद 351, तार का नंबर है 36522 47, और दूसरा तार का नंबर है 36220 77। दोस्तों भाइयों बहनों, एक नज़र बाहर के ओर डालूं तो मौसम के हालात मत पूछिए, इस वक्त जोर जोर से बारिश हो रहा है। ये दौलत ले लो, ये शोहरत ले लो, भले छीन लो मुझसे ये मेरी जवानी। ये दौलत ले लो, ये शोहरत ले लो, भले छीन लो मुझसे ये मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी।

वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अब ये आपने जगदीत सिंह के जरिए से ये गजल सुन रहे थे रेडियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। आज है मंगलवार जून की 2 तारीख, हमने एक गीत प्लेलिस्ट पर रखा है और वो भी कहता है कि आजा मेरी जान किशोर जी की, ये है जून का महीना।

आजा मेरे जान, यह जून का महीना। अभी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले से गीत सुन रहे थे। इस बार जो गीत आप सुनने को जा रहे हैं, गीत की बोल है, झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया।

झूमता सावन देखो आई, बरखा ने प्यार बरसाया। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत सुन रहे थे। हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, ये कैसे बतलाएं तुमको, ये दिल कितनी बेकरार है, ये कैसे बतलाऊं तुमसे।

जिस दिन से मैंने तुमको देखा है कुछ चोरी चोरी मैंने भी सोचा है, इजाजत हो तो जरूर बता दो। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी, आशा भोसले से गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम है परवाना। इस गीत का लेखक है कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन। आंसू की कीमत क्या जाने वो, आंसू की कीमत क्या जाने वो, आंसू की कीमत क्या जाने वो जिनके आंखों में पानी ना हो, वो दीवानगी क्या जाने जिसको कोई दीवाना ना हो।

0: आंसू भरी है जी, जाकर उनसे कह दो हमें भूल जाएं। अभी आप मैं मुकेश के जरिए से गीत को सुन रहे थे, इसमें देखा जाए तो 10 मिनट बाकी है 2 बजने में।
1: अरे जल गई जल गई जल गई।

0: जल गई जल गई दुनिया जल गई, दुनिया जलती है तो जलने दो और ये प्रेम का रिक्शा हमेशा चलने दो। अभी आपने आशा भोसले और किशोर कुमार से गीत सुन रहे थे, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस गीत का लेखक है आनंद बख्शी।
1: इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।

दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, ये तो सही बात है। कोई कोई अपने पिया के करीब है। मैं आपने लता मंगेशकर से गीत को सुना और गीत पेश था बारंद रह के रहने वाली है राफिया रहीम बख्श, जो इस वक्त इंटरनेट द्वारा रेडियो फाहन के प्रोग्राम सुन रहे थे।

जिंदगी वो क्या ना प्यार जिसमें है, साथ अगर हो साथी तो इसका मजा सफर में है, अकेले तुम हो और अकेले हम हैं। मैं अपने लता मंगेशकर से गीत को सुना, अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और साथ में है किशोर कुमार।

0: अब चाहे माँ रोटे या बाबा, मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे घर छूटे या बगिया, मैंने तेरी बाँह पकड़ ली। लिव द ओफरविंद आलस सभी आपने किशोर कुमार और साथ में लता मंगेशकर से गीत सुन रहे हैं। इस बार जो गीत हम पेश करने को जा रही है, इस वक्त नीदरलैंड में हेलिस बंधु इंटरनेट द्वारा रेडियो फाउंड के प्रोग्राम सुन रही थी, उसके नाम से ये गीत हम पेश करती हूँ।
1: तो कुल लोरी सीखनी पड़ती।

हमारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उस पार। अभी आपने लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे, और गीत खास करके पेश था हेलविस बंधु के लिए, जो इस वक्त इंटरनेट द्वारा रेडियो फाहम के प्रोग्राम को सुनते हैं। 2:20 व्यतीत हो चुका है। अगला गीत की तरफ हम आप सबको लेकर चलती हूँ।

चोरी चोरी जो होना था वो तो हो गया, अब जो होगा वो जाने दो प्यार में। अभी आपने सुमन कल्याणपुर और साथियों से गीत सुन रहे थे। इस बार जो गीत आप सुनने को जा रहे हैं, गाने वाला है पद्मश्री मोहम्मद रफी।

0: जरूरत हो तो अपना प्यार भी कुर्बान।
1: अगर संसार में औरत न होती तो इंसानों की इज्जत न होते, ये तो सही बात है। मैं अपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से गीत को सुना, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं? हाँ, मैं वही हूँ। अभी आपने महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर से ये गीत को सुना। हमारा और आपका मिलन 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद रेडियो फाहन के अनाउंसर साथ ही प्रोग्राम को ऑफर लेगा।

तुम कहाँ और मैं कहाँ, बड़े खूबसूरत हो तू नौजवान। अभी आपने लता मंगेशकर से गीत को सुना। 7:30 व्यतीत हो चुका है, हमारा और आपका मिलन सिर्फ 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद रेडियो फाहन के अनाउंसर साथ ही प्रोग्राम को ऑफर लेगा।

एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिला भी, अपने मुकेश से गीत को सुन रहे थे, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, ये कैसे बतलाएं तुमको, ये दिल कितनी बेकरार है, ये कैसे बतलाऊं तुमको।

ये झुके झुके नैना, ये लटबल खा के तो फिर क्यों ना मेरा दिल दीवाना हो। भी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से गीत को सुना।

और ये जाना पहचाना चून है, इसका मतलब यही होता है कि मेरे हिस्से का प्रोग्राम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को आया। आज आपकी खिदमत किया खुद मैं बीबी साहिबा रहीम बख्श। आपने एक से अभी तक हमारा प्रोग्राम को सुना, प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बाद रेडियो फाहन के अनाउंसर साथी के जरिए से बाकी के प्रोग्राम आप सुनेंगे। अगर कुदरत ने चाहा तो आने वाले मंगलवार को अपना मिलन होगा। तमाम सुनने वालों की खिदमत में खुद

हाँ मैंने ही प्यार किया है। फाहों हिंदुस्तान रेडियो, आप सुन रहे हैं राजन के साथ सासों की जरूरत है। आज की फिल्म का नाम है मिस्टर सानू।

जेंटलमैन, आज हमारे बीच मिस्टर एंड मिसेस पिस्टन जी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। लेट्स गिव देम अ बिग हैंड।

0: आशिकी के लिए ये आशिकी क्या होता है आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो कभी जब मैं शुक्रवार के प्रोग्राम करूँगा तो आप 4 और 5 के बीच तार करके और पूछ लीजिए तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि आशिकी क्या है, क्या होता है। आपको मालूम है भैया जॉनी की आशिकी क्या है?
1: हाँ भैया, आशिकी बहुत खराब का बीमारी है।
0: पैरासीटामोल से अच्छा हुई,
1: पैरासीटामोल से अच्छा है भैया।
0: झारे के परी।
1: हाँ, अब देखो भाई, ये द्वारका बीते हुए दिनों में सूरीनाम देश में एक लड़की जब तक यार के यही आशिकी के पर बाद में फंस के और अपन हो तो जाए के कुदा से जिसका मक्का और वो तो ले आए के वो गिर गए पानी में, गिर ना गए साल मोर प्ले करी so. तो भी बता ले आशिकी भैया द्वारका जान ले ले तो आप कभी किया होगा कि अभी करते हो गए?
0: ये काम तो किसने नहीं किया, सबको ये काम किया,
1: किया नहीं हो जाता है।
0: जैसे जैसे तू बोले बीमारी है आजकल।
1: हाँ, वो बीमारी है। हाँ। लोग भाई राजेश, दुनिया पे लोग को एक चीज से बहुत डरना चाहिए और वो है प्यार करना।
0: या
1: प्यार बहुत अच्छा
0: है, प्यार हो जाता है,
1: प्यार हो जाता है।
0: या
1: बोले प्यार किया नहीं जाता है।
0: भैया जोड़ी, थैंक यू।

0: चार मिनट रह गया है 6 बजने में। प्रोग्राम यहाँ से मैं समाप्त करता हूँ, आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी को प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। मिस्टर जर्नी नंबर वन आ गया स्टूडियो में, बगल में बैठा है दोस्तों, और अभी उसका प्रोग्राम 6 बजे से आप सुनेंगे। खास करके जो न्यूज ब्रेक था आप जरूर सुनते रहना। वीकेंड है, आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेश हो। खुशबू रहेगा, फूल खिलेगा, जिंदगी रहेगा, रफी मिलेगा। आप सभी को एक सुहानी रात।
1: संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां व समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी राधा

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्रेस रेडियो पर अनतिलक उक्तिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM प्रिंट चैनल पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। पूरी टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। अनतिलक वर्क्स लेडीज एंड बॉयज, अनतिलक वेदांत, जो भी रेडियो का काम हो, दैनिक फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, ऑर्गा मान हो, ऑर्गा वुमन हो, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो जरूर उसके बारे में कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से जरूर ऐलान करवाना यार। वो सभी जानकारी इसके बारे में न्यूज़ हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। सभी जानकारी बेलेटाइनस कंट्रोल यूरिन ओपनर 7365 2247। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना है और रिक्लाम बनाते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और हमारे फुल टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। कुछ नगमे रह गया है सुनाने के एड्डी फिल्म जोगन, उसी फिल्म में से आप सुनेंगे एक मजेदार सॉन्ग, डगमग डगमग डोले नैया। महान गाने वाली पुराने जमाने का द ग्रेट गीता दत्त जी के मधुर आवाज में बूलो सी रानी के सांच पर।

क्या बात है, अति सुंदर बयान, डगमग डगमग डोले नैया uit de film Jogan 1950. Bulo Sirani ke saanj per Geeta Dutt ji ke madhur awaaz mein. Agla bayan ek baar phir usi film mein se aap ek ati sundar bayan sunenge, lekin is baar The Man with the Golden Voice Talat Mahmood ji ke bahut hi jawan awaaz aap sunenge uit de jaren 50. मिलके सुनते हैं, सुंदरता के तो सभी शिकारी हो जाते हैं ना।

सुंदरता के सभी शिकारी, द मैन विद गोल्डन वॉइस, तलत महमूद जी के मधुर आवाज में बोलू बुलोसी रानी के सांच पर एड फिल्म जोगन। अगला बयान सुनने से पहले कुछ आखिरी शेर हो जाए ना हमारी शेर के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है यारों की ना कश्ती है ना किनारा है कोई, ना कश्ती है ना किनारा है कोई, ना मंजिल ना सहारा है कोई, ना आंसू है ना खुशी का इशारा है, पर आप है तो लगता है हमारा भी है कोई। दिल से दिल जुदा नहीं होते, यूं ही किसी पे फिदा नहीं होते, प्यार से बढ़कर तो दोस्ती का रिश्ता है, प्यार से बढ़कर तो दोस्ती का रिश्ता है, क्योंकि दोस्त कभी बेवफा नहीं होते। दर्द से दोस्ती हो गई यारो, जिंदगी बेदर्द हो गई यारो, क्या हुआ जो जल गया आशियाना हमारा, क्या हुआ जो जल गया आशियाना हमारा, दूर तक रोशनी तो हो गई थी यारो। आखिरी शेर यारो, दोस्ती में गीले भी होते हैं, दोस्ती में गीले भी होते हैं, मोहब्बत में शिकवे भी होते हैं, मगर तुम ये मत जाना भूल, मगर तुम ये मत जाना भूल के मोहब्बत की राहों में कांटे भी होते हैं। ये था कुछ आखिरी शेर्स। अगला बयान, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जोगन, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। एक बार फिर गीता दत्त जी के मधुर आवाज में बोलो सी रानी के सांच पर।

है अति सुंदर सुंदर पुराने नगमे आप सुन रहे हैं एडी फिल्म जोगन 1950 गीता दत्त जी के मधुर आवाज में बोल सी रानी के साज पर अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान डरो रे रंग डाड़ो मशहूर गाने वाले पुराने जमाने के एक बार फिर गीता दत्त जी बोलो सी रानी के साज पर।

डारोरे रंग डारोरे रंग रसिया फागुन का दिन आयो रे। ऐसी फिल्म जो गन पंडित चंद्र का लिखा हुआ अति सुंदर बयान बूलो सी रानी के साँच पर सुना दिया आप सभी को गीता दत्त और कोरस। तो धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है हमारे श्रोताओं, तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक छोटा सा बयान आप सुनेंगे, ऑल्सो फ्रॉम द मूवी जोगन, एक बार फिर गीता दत्त जी के मधुर आवाज में, बुलो सी रानी के साँच पर गेंद खेलो कान्हा के संग।

0: बाबूजी आप यहाँ?
1: क्रस्ट के निमर हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ऐड फिल्म जोगन गीता दत्त जी के मधुर आवाज में तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये तक था आज मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये अश्वमेध लेकर घर को जा रहा हूँ। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं की आप सभी को मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ। सरनामी संगीत लेकर कुछ बैठक गाना, कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स, कुछ नए नए नए आवाजें फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। हमारे बात आप श्रोताओं को सेवा करने वाला है। एक हेयर हॉलिंग सुनेंगे न्यूज का जो पेश किया गया था डोर ऑन्स कोलिखा बड़का भैया श्री रोमियो हाउस जी के जरिए, और उसके बाद एक से एक अनाउंसर साथी हमारे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आप सभी को खिदमत करने वाले हैं। तो मुझे आप सभी इजाजत दें, हिल फैन नखत्रस्त, और जो प्रोग्राम सुनते हैं जरूर मजे लेते रहना मैं अंदर कोलिखास, और हम मिलते हैं आने वाले रविवार शाम 5 बजे। और जाते जाते तो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ सोचता हूँ गुनगुनाने के लिए।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है इंटरनेट के लहरों द्वारा यह कार्यक्रम आप श्रोताओं के घर तक पहुंच रहा है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम। कार्यक्रम में तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंतोर, जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक इवेंट और खनिसात और हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवाकर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार हो, तो हो सकता है कि आपके धंधा भी फटाफट चल पड़ेगा, या तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में तमाम लोग सुनेंगे और आएंगे आपके इवेंट पर। तो जरूर इस बात को आप ध्यान में रखना कि फाइट सस्ते दाम में हम लोग आपके जो भी रेडियो का संदेश है, कमर्शियल हो या तो जरूरी खबरें हो, ऑफ मात पर हम लोग बनाकर जितने बार आप कहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूं यारों कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलत एजेंस कांतोर उर फन मांडा तोत फ्रेडा फन नीख उस मॉर्गंस तोत फाइव उस मिडास अब द फोलगंद टेलीफोन नंबर्स कांतोर 07-362-20-47 और स्टूडियो कतार का नंबर 07-362-20-77। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रेकलाम बनाते रहना फाउन हिंदुस्तानी के बारे में। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू इसके लिए, और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। सभी जानकारी

बहुत ही जोर दोर से और धूमधाम से पहुंच रहे हैं हमारे प्रोग्राम। तो वादा के मुताबिक लेकर चलते हैं कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल नौजवान उभरता हुआ कलाकार है, गाता है, बजाता है, कंपोज करता है, लिखता है, मृदुती तिम्राल कलाकार सारित दत्ता जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुनेंगे कि दर्द दे गया। म्यूजिक कंपोज अंत अरेंज बाय द मैन हिमसेल्फ। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल। अरे यार बजना

छू लेने वाला नगमा खास करके रोंटे भी खड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे बयान जब सुनने को मिलता है ना। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक और मशहूर गाने वाले इस जमाने का डिग्रेड हर्षदीप कौर जी का बिल्कुल नया सॉन्ग है दुआ करो। और ये अति सुंदर बयान को लिखा है विजय अकेला और कंपोज किया है म्यूजिक डायरेक्टर शमीर तंदन। मिलके सुनते हैं हर्षदीप कौर के ब्यूटीफुल आवाज में दुआ।

क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग दुआ कि मुझे इश्क हुआ जमाने से, सबसे क्या बात है, क्या अल्फाजे है महान लेखक विजय अकेला जी का, और म्यूजिक डायरेक्टर शामीर तंदन के साथ पर सुनाया आप सभी को इस जमाने का मशहूर गाने वाली पंजाब का हर्षदीप कौर जी, तेरा मैं इंतजार। एक और महान गायक इस जमाने का हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, दो भाई मिलकर खूब धमाल मचा रहे हैं, अरमान और अमाल मलिक। अरमान मलिक के ब्यूटी बिलाइटी फूल आवाज में आप सुनेंगे, कंपोज बाय अमाल मलिक और कुणाल वर्मा जी का लिखा हुआ है ब्यूटीफुल सुपरहिट सॉन्ग तेरा मैं इंतजार।

अरमान मलिक के आवाज और अमाल मलिक के साज, ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सामने पेश किया गया, लेखक कुणाल वर्मा। कहाँ चल दिए एक और मशहूर गायक इस जमाने का, हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, द ग्रेट विनीत सिंह हुकमानी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। और म्यूजिक क्रिएट एंड अरेंज बाय द ग्रेट विनीत सिंह हुकमानी हिमसेल्फ।

ही ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को इस जमाने का महान गायक विनीत सिंह हुकमणी। अगला बयान तू है तो इस जमाने का जबरदस्त गाने वाली द ग्रेट नीति मोहन जी का बिल्कुल नया सॉन्ग, संगीतकार हनी एंड बनी के सांच पर और लिखा है ये ब्यूटीफुल अल्फाजे द ग्रेट सागर जी ने। तू है तो

संगीतकार हनी बनी के साज और लिखा है सागर जी ने इतनी सुंदर बयान को। अगला बयान एक अति सुंदर सॉन्ग है, जबरदस्त सॉन्ग है और अरेंज और गाया है द आंध्र मलिक, अमाल मलिक के साज पर और उन्हीं के आवाज पर। En natuurlijk moet ik jullie hierbij ook vertellen, gaat richting 32 miljoen views, Jabberjee Song.

बयान मोहब्बत अमाल मलिक जी के साज और संगीत और उन्हीं के मधुर आवाज में ये तीज सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। और ये बयान को लिखा है श्री वायु जी ने। तो यारो कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना हमारे शेर्स के पुजारियों के लिए। किया है कुछ धोखे का शेर है दर्द भरा शेर्स। मैं काबिले नफरत हूं, अगर मैं काबिले नफरत हूं तो छोड़ दे मुझको, तू मुझसे यूं दिखावे कि मोहब्बत ना किया कर। आखिर क्यों बस जाते हैं दिल में बिना इजाजत लिए, आखिर क्यों बस जाते हैं तू दिल में बिना इजाजत लिए। वो लोग जिन्हें हम जिंदगी में वो है, वो लोग जिन्हें हम जिंदगी में कभी पा नहीं सकते। मेरे लफ्जों क्या मेरे लफ्जों को याद रखना। बहुत सी बातें सोच रखी है तुम्हें सुनाने के लिए, बहुत सी बातें सोच रखी है तुम्हें सुनाने के लिए, पर तुम हो, पर तुम

करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम वो सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। ना जाने कब से हो गए इतनी शिद्दत पसंद हम, ना जाने कब से हो गए इतने शिद्दत पसंद हम। जब तक सहम ना खाए तसल्ली नहीं होती यार। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, ये माया था दिल लगी का के बराबर आग लगती। ना तुम्हें करार होता ना हमें करार होता। ये था कुछ आखिरी शेर्स आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अगला बयान तू ही है, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने का जबरदस्त गायक, गफ्राहद आर्टिस्ट, मोमेंटल फन ऑफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, माएस्ट्रो अरिजीत सिंह। अति सुंदर बयान को लिखा है कौसर मुनीर और सजाया है अमित त्रिवेदी जी ने।

हुआ रोमांटिक सॉन्ग लेटेस्ट हिंदी सॉन्ग 2024 अश्वनी मचल जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। आज का इस खूबसूरत और हसीन प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से,

श्यामी अमित त्रिवेदी के साथ पर आप सुनेंगे लव यू जिंदगी, ब्यूटीफुल सॉन्ग रिटन बाय कौसर मुनीर। और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को जसलीन एयर।

0: beautiful song by us, Jocelyn R. DK Beautiful Awasme, music composed and arranged by Amit Trivedi, और लिखा है ये अति सुंदर बयान को कौसर मुनीर। इश्क बढ़ता गया, नौजवान जबरदस्त गायक इस जमाने का द ग्रेट पवनदीप राजन को लाते हैं प्रोग्राम में, और वो सुनाते हैं जीत गंगुली के साँच पर रश्मि विराग का लिखा हुआ अति सुंदर बयान।
1: सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लाता हूँ

इश्क बढ़ता गया। इस जमाने का जबरदस्त गायक पवनदीप राजन के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, कंपोज बाय महान संगीतकार गायक द ग्रेट जीत गंगुली जी, और लिखा है रेशमि वीराग जी ने अति सुंदर बयान को। तो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है यारो, आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे, खेल खेल में। क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, दूर ना करें एड फिल्म खेल खेल में, कंपोज बाय महान संगीतकार द ग्रेट तानिक्स बाक्षी, और गाए है ये अति सुंदर बयान को विशाल मिश्रा और जहरा एस खान। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल, आखिरी बयान आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में।

Hij heel heel wees de movies name door na kare beautiful song sunaya aap sabhi ko Tanik's Bakshi ke saaj par Vishal Mishra aur Sara S Khan chorus ke saath milkar Arithi Sundar Bayan ko likha hai Shri Kumar ji ne प्रिय श्रोताओं ये तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम में जो समाप्त होने को आया। ये अश्वमेध लेकर घर को जा रहा हूं यारों की जिस तौर तरीक से मैं आप श्रोताओं को कोशिश किया सेवा करने में ये अश्वमेध है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। दिनों में मैं मिलता हूं आप सभी से आवाज के जरिए यारों, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, मुझे आप सभी जरूर इजाजत दे और जाते जाते कुछ ना कुछ तो हमेशा की तरह गुनगुना देता हूं यारों।

राम राम मेरा प्रणाम मेरा सलाम बाय बाय श्वाय श्वाय लव यू ऑल ऑफ द बॉटम ऑफ माय हार्ट और मिलते हैं आने वाले दिनों में।

और एक बार फिर हम कहते हैं जय जय जय नोहकीर, जय जय जय हमारा सूरीनाम। तो दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ सूरीनामी की गीत सुनाएंगे, यानी कि हमारा काम है नए नए नए नए कुछ प्रोग्राम बनाने को। अगर सूरीनाम के गीत जो होता है तो हम क्यों नहीं क्रिस राम खिलावन को लाते हैं, कारण कि क्रिस राम खिलावन इज ऑन से टॉपर, एन फ्रॉम द टॉपर्स नेचुरली द हेल मो यूनिवर्स फॉर ऑन से सरनामी हैव गेसोन। लेट्स वे फॉर गाइस लिसनर फ्रॉम क्रिस राम

Oh, wie kan het anders zijn dan onze echte originele Mohammed Sharif Zaak. Yo, is dunia mein hi hai dosto, lekin phir bhi apni awaaz hum sab ke liye chhod gaya hai. Aur jo chhod gaya hai, to usko jarur jarur aapko hum sunayenge hamare yaro. Aur main se ab aap log ko aur hum kuch sunayenge. We have ook een Den Haag imam die over Surinaams lied hamara Sarnami ke bhasa wala geet ko gaya hai. Aur wo कौन है दोस्तों? दैट इज ओनसे रबिन बलदेव सिंह. रबिन बलदेव सिंह भी कुछ गीत एक गीत को गाया है हमार सरनामी भाषा. तो आज आओ मिलकर सुना जाए हमारा रबिन बलदेव सिंह जो Den Haag का है वो आपको क्या सुनाते हैं. आओ जरा सुना जाए.

अरे बोलो सतनामी, तो ये तो जरूर हमारा सुरिनामी भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत महान है और उसको जकड़ कर कस के पकड़ना चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है? हमारे देनहाख के रवीन बलदेव सिंह है। मैं से वहां नार ओन से फॉलोस्लीट या दैट मुट ओक अंकिर चकत राइट वर्ड मार इन हिंदुस्तान, वही तो बतिया है। बोलिए जॉनी ये क्या है? आओ सुना जाए हमारा सुरिनाम से फॉलोस्लीट इन सरनामी हिंदी में ये कैसे गाया है या गाया गया है। फॉइस धुरे ननकू एंड मीरा ननकू ने इस यानी सुरिनाम से फॉलोस्लीट को गाया है।

और दोस्तों आपको हम कुछ सरनामी जों तो सुनाते ही रहेंगे। जैसे आपको पता है आज हम उस मूड में हैं, हम पूरा दुनिया को गीत सुनाते हैं, कुछ कभी भोजपुरी तो कभी यानी कि और यानी कि इंडिया का भोजपुरी, लेकिन आज आप लोग को हम सुरनामी गीत सुनाएंगे।

और बेन से ये है हमारा सुरीनाम। Als je dit soort liedjes heel aandachtig gaat luisteren, mensen, krijg je gewoon kippenvel ervan. Ha, agar je kuch apna khun mein hai, apna shareer mein hai, to ye sab geet jo hai, to aapko jhagjor dete hai ki hamara desh Suriname to apna hai desh hai, jahan pe hamara janam bhoomi hua hai. Lekin sab log ko wo feeling nahi hai, lekin jitne log ke aapko feeling hai, to hum chalte hai एक मोहम्मद शरीफ इसाक की ओर और रीति बलदेव सिंह कैसे हमारे बाप दादा जो है हमारे इंडिया भारत से सूरीनाम देश में आए हैं वो भी एक हम रख देते हैं।

पुराना कलाकार है गुरुदत्त कल्ला जीन का, ये सोम है हम है सरनामी, और आज के नौजवान जो है हमारे हॉलैंड देश में वो भी है, वो सबके भी फीलिंग है सुरीनाम के, जैसे भैया संदीप बदलू है वो भी कुछ सुनाए है आज के यौर क्या गाते हैं सुरीनाम के बारे में।

से आए थे, आज उनके दुआएं से सुख की हवा चलत है।

तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरिए नाम सस्ती काले। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

दोस्तों आज है और आज भी आप लोग को हम समाचार सुनाएंगे। तो आज भी हम फेसबुक के माध्यम से आज भी हम लाइव है हमारे यारो। अगर हमारे प्रोग्राम को आप फेसबुक के माध्यम से और यानी कि देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, तो जाइए रॉय सूरज वाली भी नहीं जॉनी नंबर वन भी हमारा फेसबुक है हमारी जनता।

0: तो दोस्तों बहुत गर्मा गर्म खबर है सूरीनाम की और धर्मेंद्रा आएंगे भैया स्त्री तो धर्मेंद्र वेलकम ब्रदर आ गया है राज राम लगन भी आकर जुट गया हमारा प्रोग्राम में आप सबके हमारा प्यार भरी स्वागत है हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को आप लोग को पता है दोस्तों इस समय पे और यानी कि सोशल मीडिया पे सूरीनाम देश में गम्मच मचा हुआ है कारण कि वहां पर भैया यहां हॉलैंड में एक आदमी का नाम बा पॉक्स गजराज एक बिजनेसमैन है भैया साकमान है पैसा वाला आदमी है और ओके राजस्थान फर्स्ट इंटरव्यू करी से और राम राम भाई राज राम लगन तो ओके इंटरव्यू करी से तो इंटरव्यू पे इपॉक्स गजराज का बोली से छोटा रूप में आप लोग को हम सुना दे है हमारे जनता
1: And that was 4 weeks later. You know, eventually, when both I and the project received approval that it could proceed in Suriname, people were willing to buy land. We weren't going to ask if we could, state land or whatever. The people just wanted to buy. They said, we'll buy it.
0: तो दोस्तों ये नीदरलैंड्स अफेयर से भी है इसमें और बताए गए हैं कि ये आदमी सूरीनाम गए थे और ये है पॉक्स गजराज और वहां पर मांगत रहा एक जबरदस्त ने यानी कि दिल बनावे देशवा खातिन 2000 घर मांगत रहा बनावे पॉक्स गजराज वहां पर दोस्तों रेडियो स्थान फास्ट पे ये जाकर और बताई है और क्या क्या बताई है बोले जब गैल है हुआ पे तब बोले जब गैल है तब संतोखी के बोले बैलकरी से कि हम मंगेला 2000 घर बनावे सूरीनाम देश में हाँ दोस्तों सूरीनाम देश में तो संतोखी बोले वही समैया पे बोले वही समैया बोले हम ले रही ली का बोले है देशवा ले रही ली हम तो ओके समय न रहा तो एन आंद्र मनीर पे बोले उपठा दे से का बोले हेगा ब्रुंसवाइक लगे जब ब्रुंसवाइक लगे गैल है तो बोले है कि हम कई मिलियार्ड के बोले हम मांगे लिया इन्वेस्टर करे और वो बोले हेगा 200,000 की कितना बोले मांगे है यहाँ पे बोले है घर बनवावे और वो बोले हेगा तुलन का मांगे तो ब्रुंसवाइक बोले बोली से कि 2% उपदरखवा के बोले हमारे रिकनिंग वहां पे तू पठा दे हवड़ा कर दे तो बोले तो के हम जितना है बोले हम तो के बोले हैगा सफर खनिंग रिकल कर मिया स्टॉक मंथली प्रोसेस स्टॉक 200 2% ऑफ मे रिकनिंग द रिकल एक आले फॉर खनिंग ई अदमिया बोले है और बोले है ने कौ द रिकनिंग बेन तो नहीं सीख अदमिया बोले हम थोड़ा बीमार बाटी कि हम जाबे ई चीज कर 3.5 मिलियन एरो के बातचीत है और ब्रेंसवेक बोले 2% बोले हमारा रिकनिंग वहां पे तू धर दे तब बोले कुछ हो ही पाएगा तो ये रमिया बोले हैगा बोले एक फर्टेल यही सो मेर ओवर बॉक्स कैट की ब्रेंसवेक बोले है ओके उका जुका सब पुलिस भैया बड़ी गाड़ी आ रही देई से रमिया बोले ऐसे बोले चलो मांगे देश चलाए बोले सूरीनाम बोले यूलिसन बनाने बोले बनाने रिपब्लिक है भैया बोले तुन द रेक्टर और अनफंकलक दस्कुंड द क्यूरेटर के बारे में यह बताई से बोले जो एगो अने होटल एगो रहा लियोंस बेरेक बोले जो हम किल्ली बाटी तब बोले 9 हेक्टार जमीन भी ऊपर रहा 9 हेक्टार जमीन में से बोले नोटार 3 हेक्टार बोले जगह या बेद दे जो वारफान बोले हम ऊपर बस लाख कर ले रही बोले बस लाख चीज पे बोले सरनाम में बोले हमार 9 हेक्टार जगह जो हम किने रही होटल वा हमें यहाँ स्टार्ट दोस्त रहा लियोस बैरक पे आप लोग के पता है, बोले ओमा से 3 हेक्टेयर बोले नोतारस ले लीजिएगा, बोले हैगा बेच दे इसे, तो बोले के बेची से, तो बोले की तो के बेची से का बोले है अने कॉम्बी मार्क के, बोले उस समय पे तू जाने बड़का स्पॉन्सर के रहा बहुता के कॉम्बी मार्क रहा, तो बोले तू नालिस नकल बोले अते से बनाने रिपब्लिक इन सुरीनाम, बोले हैगा सन नाम में बोले सब कुछ हुआ बिकाऊ है बहुत इस एनिट में नहीं मार है ब्लेव हेड ब्लेव वे एनडीपी यहां लिखले भैया खप्लंडर व्हाट फॉल्ट व्हाट फॉल्ट एंड नॉक द फर्दिनन इन सुरीनाम। इरेमिया बोली से बड़ी बड़ी बात बोले वे हैव न योर रखेरिंग एंड यार हु कह के तुरक नार है इख्तियार थी बतावे है एनडीपी या मार ये कान है कई का नरहार, तो ये सब बात भली एकर बारे में भैया। और रोनी ब्रेसवेक बड़ी नाराज है और ब्रेसवेक का बोले है ओवर पॉक्स बोले नीत आले हिंदुस्तान एंड हेवन दी लीलक मनीर फ्रूखर सौदन वे हेड इन द कॉफरबाग हेवन खोई, बोले अब बोले उची युवा हम ना करब एकर बारे में ब्रेसवेक के जूका ऊका एमएमपी के गाड़ी दे से बोले बंदर अंदर सब बनाई से भैया, तो इ डिस्क्रिमिनेशन से वोट तो ना चाहिए खबर करे के वेस एंड मल्टीकल्चरल ये मग नीत dit soort dingen gaan zeggen en op bepaalde een bevolking als mensen ons koelie ook noemen vinden we ook niet leuk, hoe kan je zeggen dat Juka AP dit en dat is, dat mag meneer en een gajaraatje niet zeggen zo en zo mensen ja betalen hega bolle hega uitspraken die pochs gajaraat tijdens een interview bij de standvaste radio over hem deed, hoewel Brunswijk de uitlating zeer ernstig noemt roept hij zijn achterban op rustig te blijven en zich niet te laten meeslepen door een boosheid. Or wat je hega volgens Brunswijk mogen de uitspraken van 1 persoon niet worden geteemd als er gedrag of de mening van de hele bevolking was op Hindustan niet terugkeer is gegaan. Toe ik er bare mee behoed lamba chowna bhaiya de Brunswijk bari naraj hai ki ee ademia boli hier go saakaman hai ay saakaman gaila Suriname investeer kere a usa mangatra ik er upar se 2% le da seg meneer Gajraj wat de waarheid dat weten we niet. Dat is het. To Chitra Autaar bhi aakar 7:20 hamara program mein jut gaye hain. Bhaiya Dilip Budhu bhi aa gaya hai aur yahan yahan par kitne log hai jo jud gaya hai hamara samachar aap log bas sunte raho hamare pyare pyare janta Suriname ka samachar hai. देखो भैया क्यूबाने सुरीनाम में बहुत ढेर है भाई, बड़ी क्यूबाने हैं जो आदमी सुरीनाम में हैं, आपके तो पता होगा कि कितना ढेर क्यूबाने सुरीनाम देश में हैं, हम भी सुरीनाम देश में गरीब भैया ब्रोमफिस क्यूबान के न जाने फरकेर के लाइक हमारो तो मार के पेल भागल भाई, गैली सिपाही में नालिश कर ली सिपाही बोले कहे दौराई के पकड़ ले, हम बोली ओके पकड़ अब छोड़ी फोड़ी भोग दे भैया हम हुए रह जावे बेतरे हम कुछ ना बोली जो सो इस सुरीनाम में से अनफेलखेत आज तक कुछ ना भले भैया आन किफ्त कर ली है वो तो बस कादक हुई गए हमार बोरख औरख सब लाश हुई गए भैया जो हीरो तो हो रहा मार एक बॉस हेलमाल helemaal klaar mensen en Cubanen heb je heel veel in Suriname doen ze van hoe apare en bromfies chalawe zonder enige ervaring want hier baantje het hoor aan he ego echt paar ke bhaiya Cuban echt paar matlab dui parani ke baantje hier ho raha hai chitra to dilap ab dekh ka bhaile Cuban ke donder dakh ke baantje hai katalis se kaati se oke kono बैनाद पांडे रायश्री भी आ गया है, तो आपको रायश्री भी हम प्यार देते हैं यहाँ से हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को। तब देखो क्यूबान के काबले रायश्री क्यूबान के बुधवार के ना दोंदर दाख के भैया और बुधवार के रात के बान के समन कटली से काटी से ही बातचीत होएगा मोंगो स्त्रात में और रखा वापन द रोफर्स में कटली से काटी से भैया और कमोड़ी पे दुनिया ने कपाशों त्रय धल्ले

तो हमारा भैया फतिंगन रामराज भी आ गया है सुतमे से। तो भैया फतिंगन आप तो बहुत बड़का फैन है फिर यहाँ पे के, आपको तो मालूम होगा कि इस वक्त श्री नाम देश में बोले है सिमोंस बोले है कि हम कुर्सुआ स्टाबिल कर देली बाटी मा कुर्सुआ। तो भैया फतिंगर संतोखी स्टाबिल कर ले रहा, तो कौन ची तू स्टाबिल कर ले, ऐसे ऐसे बात आदमी बोले है। और बाकी दुकनिया के परैसुआ खड़खड़ खड़खड़ चढ़े भैया, खड़खड़ खड़खड़ चढ़े, और जो ची चढ़ जाए उना उतरे जाने हैं, ये सब बात है श्री नाम देश के। तो बोलिए जौन तू वही बतिया हर हाल करे दोस्तों, यानी सच्चाई कहना हमारा काम है। हाँ दुई फरदाख्तन फॉर फरमुड के स्कित एन सिस्टर प्रोया के गो भैया श्री नाम में कहीं एगो सिस्टर प्रोया के परमारी बो में यहाँ बताए गए भैया वहां पर दुई आदमी द्वितीय ताल वोट इरफान फरदा मंस परसोन दिन दोपहरे भैया पिस्तौल लेके दागी से दुई गो दागी से भैया जेकर पेट में लगल है, और जेकर पेट में लगल तो अब तू जाने जितना और खान है तो वही बा ओके ले आई के सेवन सीकन हिस में धरी से एट फॉर लूप ऑन द सुख फॉर द पॉलिसी इज नॉट फॉर द कोमन दैट द ट्वी फरदाख्तन इन द फलीदर फरमुडलक साकन दीने में द स्लाखोफर। तो जनता ये सब बात है क्यूबान के, और ना खाली क्यूबान के दोस्तों, और समाचार आप लोग को हम बताएंगे। अब देखो फुटबॉल वेका होई भाई, सब कोई लोबी करे है वेका, वेका में सबन बोले है जोगी बोले है रख रेंगवा भैया 500,000 डाला भरी से, और का बोले है का टेलीफिसी के एसेंट के का बोले है रक्त कीने के बारे में, बोले पैसवा कहाँ मिलल बोले ई सब ना बतावे है। तो अब गैगरी रसलान एकर बारे में बताई से बतावे यहाँ पे कि तोरिया कैसे है दोस्तों। गैगरी रसलान यहाँ बतावे कि तोरिया कैसे है, यानी कि वो जो 405 तक यानी कि फीफा के पैसवा भरे के रखेरिंग बताल द हेल्प ऑन फीफा लाइसेंसी फॉर वी का ऐसे नहीं फियाद है, बोले आधा है तो जब पूरा रह तब तो हो जात भैया ना फिर तब तो 1,000,000 डाला हो जात भैया 1,405 तक बतावे हिया रखेरिंग साल एस्टीफे बोले फिनेंशियल अंडरस्टैंडिंग दे बे फॉर लीडर फीफा लाइसेंसी के बारे में, और बोले है फीस प्रेसिडेंट जॉर्ज रसलान बोले है उपबार फरखादरे में नेशनल असेंबली में फोकस हम साल ऊपर है द हेल्प ऑन द कॉस्ट एंड फॉर हर इग्निंग नेमन टर्वेल एसटीफीएस रेस्टेड इन बद्रा फी स्पोंसरिंग मुझ सीन ऑफ द ब्रेंगन। तो एकर बारे में जोगी बोले रहा कहे ना स्पोंसर से तुम भरवावे, तो अब जाई के रसलान दिया बतावे है कि आधा पैसा एसटीफीएस से स्पोंसर से खोजेगा और आधा पैसा रखेरिंग भरेगा। तो यहां बताया है हाफ ऑन द कॉस्ट फॉर एसेंट रेक्टन दिस ईयर नर फॉर लाइट ऑन 450,000 dollar bedragen. De regering heeft volgens hem besloten STVS opnieuw te ondersteunen. Tussen naam met paisa na kaas met bhaiya. Aur ka bole hai ga aadmi jarun mangi football dekhe bhai, dat is ook een recht op alle burgers jo een football mange dekhe. To ye kaam to chahi ho ek lekin probeer dir via de sponsor te halen mensen niet हम लोग के स्टार्स इस ऑल हील एल डगमग डगमग भैया, और एल्क सेंचेस एल्क डबल चूस मुते उम खदराइट वर्ड कि कहां हम दे और कहां ना दे वो भी तो अलमाल हो दे देंगे स्वामी कार से भाई। तो लोन तो जानो एकर बारे में। अब जनता हम जाई और आगे जाए क्यूबान से लेर लिंगन ऑफ स्कूल। अब क्यूबा के बात जो हो गए है तो यहू बताए कि क्यूबा के लड़कन आजकल सूरीनाम में नीदरलैंड से जा सी के भैया। हाँ हेड अंडरवेज सूरीनाम इज नीड फॉर ब्राइट ऑफ द कॉम्स ऑफ क्यूबान से केंद्र दी ग्रोथ दे सुंदर फॉर लाइफ डॉक्यूमेंट सूरीनाम वोन एंड टॉइस आइसलेट स्पेंस प्रीकन सिंस 2020 क्वाम नेटो उतरा ढेर लड़कन आइल है और घरे समझ पास पड़े हैं, और ये सब के चाहे जाए के सूरीनाम के स्कूल में

भैया, लेकिन सबके घरे पड़े और सबके लिए खा लो ले भैया, तो कैसे जाइए? यहाँ बताए गए है, यहाँ बताए गए हैगा स्पॉन्स तालक केंद्रन और बोले हैगा ऑन द स्ट्रीट हुक दौरप लेरक्राफ ऑफ द बासेस फन बस्तियुसलेट फन फागबोंग वी सा स्त्री के बारे में है। तो हमारे प्यारे प्यारे जनता, आप लोग को हम और आगे अपना प्रोग्राम को बताते हैं। अब देखो भैया, यहाँ पे हम बोले तरी कुछ बैतलान के बारे में बताए तो लोग जानो। रोमेनिया में भैया ड्रोन गिरल है, जहाँ आदमी रहे है कुमार शिवलाल, आपको हम स्वागत करते हैं। तो ड्रोन गिरल है, रुसलान दागत रहा ड्रोन यूक्रेन पे जाए के गिर गए है एगो फ्लैट पे, और है रोमेनिया में। और रोमेनिया कौन से भैया, उन्नाफोलंत के आदमी है। अब एक बारे में बारा जुगू जुगू हुए। अब रोमेनियो बोले हैगा कि हम लोग के नाफोलंद चाहे बसकादक करे के बाकी रसलान ना गए उर्लोक आइटफूर करे। रोमेनियो से उजाए के गिर गए है एगो ड्रोन जो उदागर बांगत रहा जाए के उक्रेन पे। तो एक बारे में क्रेमलिन मॉस्को से और बोले हैगा बैतलान से साका मारिया सागारूफा रसलान के रोमेनिया फरक्लार द सुख के रसलान के कौंसिल में तो पर्सोना नॉन ग्राता एंड स्लोथ एंड कौंसिलात ना दैट अ फॉलकर रोमेनियन रशियन ड्रोन हैड गेलेड टू ब्रांड इन इट फ्लैट एंड अ नाबाय द ग्रेंस विद यूक्रेन। और बोले हैगा ड्रोन इंसिडेंट अल्स एरस्टिके एंड रुकलोसे एस्केलेसी फन द क्रेमलिन हैड लॉन्ग सेल्फ कंडक्ट ऑन नो फ्राइडे टू इन्वेस्टेरन इन बेटरे ड्रोन अफवेयर दैरफॉर विल इट हेल्प गेब्रुइकन फन यूरोपीसे सी फोंस लीनिंगन। दिस रोमेनिया और रसलान भैया तो लोन रोमेनिया और पोलैंड तो जाने ग्रेंस पे हैगा एंड दस से इन द रिस्को वेकर बारे में। तो रूसलैंड से स्नेल में तेगल मात्रेगल तेगल रोमेनियन तक कोमन। तो अब कौन मात्रेगल लाएगा अब एकर बारे में जैसे रहेगा आप लोग को हम बताएंगे। सेलेंस्की बस्कुल रूसलैंड फन ड्रोन इन जिदेन फन रोमेनिया के बारे में हमारी जनता। अब देखो भैया, हम जाए है जापान के सुरीनाम में। भैया जापान के ओ तो भर गए तुलो न परे जाने हैं कई रकम, ओ तो सब जापान के ओ तो चले है एक रही सेल्फ को जापान से ओ तो मैसेज है स्टेफ कमोटर बोले जोनी रिक्लाम करे नहीं मदद इस ओ सो नट बीत हुए अलमाल। अब हुआ के जनता जापान के बोले है अफकल ओपन पांच बरिश में बीते हुए पांच बरिश में 2.5% बोले हैगा अफगनोमन बफोल्किंग फॉर जापान इस अफगनोमन फाइव यार में 2.5% अफगनोमन जनता कमती हुई गए 2.5% और बोले दैट कोम एरोब नियर कि फोरक है यार 3.1 million मिंदर मेंशन वोंदन इन 2020 एंड ग्रोस्ट डालिंग से जापान में फॉल्स्ट स्टेलिंग बहुत इन 1920 तो लोन जानो इंडिया हाल कर दिस जापान के भैया इंडिया में और ज्यादा आदमी हो गए हैं। जापान के बफोल्किंग बोले हैगा 128 million मेंशन आ 2008 में यहां बताए गए हैं और बोले इस सका हुए आदमीन हुआ पे और तो लोन जानो हो भैया बेबी जो है 405,809 बेबीज का बोरा भैला और 1.6 million आदमी मरल रहा। तो ज्यादा आदमी मरे दाना बेबी खबर हुए तो बढ़ंती जो देश के उसका हुई एट हेड ओनर सु ब्लाइड दैट जापान 2023 एंड 24 एंड दैट द 5% प्लस बस्टोन दाना सो असर ओ कन थिंग मेंस 80 यार ऑफ ओदर। तो बोली कुछ जापान के बारे में आप लोग को हम बताई दे कि तोरिया कैसे है भैया कि जापान में आदमी कैसे कितना जनता हुआ रहे। अब भैया तमाशा देखो तो लोन जानो है ईद उल फित्र और का बोले ऑफर फेस्ट रहा आप सबको बधाई हो मुबारकबाद देते हैं हम यहाँ से। लेकिन ऑफर फेस्ट भी भैले पूरा दुनिया में जहाँ हमारा मुस्लिम भाई बहन रहते हैं और जब वहाँ पे अब ये बात हो रहा बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में भैया सब एक भूल के लेकर बेफल के लेके गए और ओके श्राक्तिक करे मांगी भैया तो वो बेफल हुआ से पागल है भैया हुआ
से वो बेफल भागल है और बेफलवा बहुत मोई लगे बेफलवा देकर भैया ओकर बार और जितना है जो आपने सोशल मीडिया पे ये तो देखिए ओकर नाम सबन धरे से गा दोना त्रेंपन लगे भैया ओकर बार और सब बगलिया में ऐसे झारल है हाथ दी मार ए फकैकर और ओकर नाम अल्बिनो बेफल बांग्लादेश में और वो भाग्य है तो इतना मोई लगे वो बेफलवा मतलब वो बुल जोन है हम उनका बोले लोग के भैंसा बोली ना मेरे ख्याल से तो ओके सबन बोले ओकर गटाई ना काटीगा तो ओके ले जाए के को धीरन तैन में धर दी से बोले दा दोर से ब्लोंदा हार दोनाल त्रिम पोर्थ खनुम ओकर नाम बेफलवा के धर दी सबन दोनाल त्रिम भैया प्रेसिडेंट जो हम लोग के अमेरिका के वन ओकर बरवा परसीस ओ इसने लाल लाल बगरियाम ऐसे झारल है तो कुमार शामी भी आ गया है आपको हम स्वागत करे चांदनी जितन भी आ गया है मतलब कि राकेश आ गया है हाँ तो राकेश जी आपको हम स्वागत करते हैं यूट्रेक्ट शहर से मेरे ख्याल से हाँ तो यहाँ बताए गए है कि ओकर गटाई ना काटिस अब बांग्लादेश के रखेरिंग का करी से ये भैंसा के ले जाए के दीरन तैन में धरिस की तुलन एके का बोले है अने अने पोसो फॉल्क मिर्धा है ते दीर अम बिसोंदर सख्त आर्द्र का कराक्टर द ब्रूर फन द मिरांडा बदाख द बेनाम डोनाल्ड ट्रम्प ओम दे से कैप्सल एरख लाइक ऑफ दैट फ्रॉम अमेरिकानसे प्रेसिडेंट और 680 किलो के बा वीकन द बिफल वेट एयर दिस वीक फॉरकोक ओम डोनाल्डा को ऑफर टू वर्डन टेडिस ऑफर फेस इट इज मुइलक ओम अफस्केट फ्रॉम हिम टू नेमर मार एन ऑफर दीर इज फॉर द ऑफर फेस वो सेलन डोनाल्ड ट्रम्प फॉर ऑल्टेड herinneren, zei Mirda tegen de krant. Obbele maar op het laatste moment werd het dier gered van de slag. Volgens de Bangladese minister, wanneer donderdag tijdens offerfeest zoveel mensen op de buffel afkwamen, dat het niet meer veilig was. De Bangladese overheid heeft de koper van Donald Trump terugbetaald en het dier is momenteel in de dierentuin van hoofdstad Dhaka. Ja, aanvloon je joh, ja. Dhaka, te jaroer je joh. Aan en jane Bangladeske. Donald Trump के देखे ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता तो हम और आगे को अपना समाचार लेकर चलते हैं ताजा ताजा ताजा ताजा खबर भैया घर में सुखना है सुरीनाम देश में घर बैठे सब तो के मार पीट के लूट लेवे भैया लूट लेवे है यहाँ पे देखो एगो जगह के नाम है बेला दोना स्ट्रांग सुरीनाम देश में है और वहां पर कौन ची लेगे भैया चर चर लुटेड़ा हाँ रात के और गैल 1000 एसआरडी लूटी से भैया तो चार मिला कि कई मिला रहा कैसे बटिए पैसवा और एगो में मोबाइल टेलीफोन और बोले हैगा अरमिया बोले फॉल्कन्स एमका हाथ है नेचर एरबल जैसे वो घरे गैल है उतरे में चार आदमी के अनफाल करी से पिस्तौल लेके बदरेक करी से और ओकर ताश लेके स्पिलर हा ओए मैं खाली 1000 रुपया पैसा रहा भैया 1000 रुपया में तो हुआ का बोले हैगा कौन ची पहिए भाई बाकी उतरा बड़का ओवरफॉल सबन करी से पिस्तौल

एगो बहुत जबड़ बोमा मिलल आना कोंदा ना लावलाव चीज है गा बुद्धू चांदनी जबरदस्त तू जाने सरनाम में बूढ़ा भाए पानी इतना बरसल है चारों बगल बूढ़ा है त जनावर अजगर जितना चीज है सब अपन होल छोड़ छोड़ ऊंचा भगे है। तो यहाँ बताए गए है, यहाँ बताए गए है सुरनाम में बरखा से गो वो वेख है वहां पर जहाँ आदमी रहे है जबरदस्त बोमा हुआ गई है भैया और इतना भारी बोमा हुआ गईल है रेप्टिलन खान तैने स्वार रीकर फाक ऑफ द सुकना द्रुक एंड फेल का प्लेकर यहां लिखल है अपना लड़का के बचाई के रखियो भैया औरतियों के पकड़ के बैठियो वन बोमा ना देखे ती लड़का है कि कौनची है मुर्गी है के डुक्सी है ओके जब महकल ओके जब महकल तब ऊ तो के लपेटी एगो खराफ मशीन से जेके सब बोले है पोकलेन ओसे सब बड़ा टांगी से हम खुद इतना बड़का बोमा ना देख ली भैया बहुत जबरदस्त बोमा है और बताए गए हैं द साम लीफन वर्ड आर्टिफिशियल अलर्ट द लीफन में से फन दिस सोर्ट अन रेप्टाइल बेस्ट में से आप लोग को ले जाए तेरी कालम की ओर हाँ कालम के संगे भैया बारा छिछा के लेदर है नानी वो छिछा के लेदर है भैया कभी देखियो तो कैलम में आए तब उस सबके सुरनाम में सांदराई पे देखिए फरकेस ले देने जाए के कायन में उतरे तो गायना में अब दूसर चकल्लस भइल है नानी दूसर चकल्लस भइल है और वो बताए गए है कि कैलम के बोले तेलवे ना पाई सरनाम में भरे के केरोसिन तब बोले वो उड़ के गईल है उड़ के गईल है फ्रांस गुयाना में भरिस तब उ नीदरलैंड खाइल इसके बोल पे भैया ये बात बतावे है कालम अब सुरीनाम के हुआ पे सब संदराई के आदमी ऑन द सुख कर की चीज हुआ कैसे है तो बोले कालम बोले झूठ बोले है बोले अब दैलक आइल है ब्रांस्ट ऑफ क्वेस्टी रोंड कालम जो योहान अदोल्फ फेंगल इंटरनेशनल लुखाफन सुरीनाम में बा मंगलवार के कालम जाए के फ्रांस गुयाना में भरी से तेल तब उजाए के उड़ल है और मेल पे बोले सरनाम में बोले तेल ना है तो यहाँ बताए गए हैं फोल्कस वार्निंग मस्तास ओली डायरेक्टर एडी फ्रंकल बोले ये बतिया नकलोप होएगा और बतावे हैं कि चीजों ऐसे ना बोले कालम बोले पैसा ना भरी से द क्वेस्टी ड्राइव फोल्कल फ्रंकल और मन बताले खस्किल तो से कालम एंड गो टू द डॉन द डॉक्टर मास्कपे फ्रॉम स्टास ओली वार द फ्लिक मास्कपे ब्रांस्टोफ अफनी फ्रॉम गो टू बोले बेहर बताले फ्रॉम अ ब्रांस्टोफ रेकनिंग ओक एंड फी नेम्स द स्लख्त एंड लुफ्टहाफन एंड ड्राग इट बद्राफ फोल्कस अफ एंड लुक्स तो पैसा ना भरेला भैया कोनो फेसे तो ई कालम इतना झूठ बोलिस भैया लेकिन सच्चाई कैसे है कालम हैव गो टू इन मिनिस इन कोर्ट खदे खदाफार द सादिन फ्राइडेग 29 मई दौर तक खान तो बतावे कालम सऊदी फी आ लंगर ते नि बतालन दारदोर हैव गो टू हेड बद्रा फोल्कस फ्रंकल मेर ना अन यार फोर गेस्कोटन इन मिडल सो द अखतसन फ्लिंग सेन opgelopen en wil go to dat KLM eerst betaald voordat het brandstof wordt geleverd. Maar zo is het mensen. Toen mangen he, ka bole he ka paisa na bhare, ta ka moa thoro bani KLM to hum log ke prijs chadhai se, ta ka hai na jai ke Surinam ke tel ke paisa bhare aur janta pe laen. Aap log ke sain malum hai bhaiya hum KLM ke bejitti na karila, maar ik heb het zelf meegemaakt. Misschien hebben jullie ook meegemaakt. Jab tu KLM mein baithiyo bhai, और वहां पे तरी से इसके फॉल पे जो फरतराखें हुई है तरी से लाती हुई है जैसे कि ओके उड़े के 12 बजे मान लिया जाए अब 12 बज गए ट्विन तक मनीतन ऊपर हुई तब वो जाने का बोलेगा बोली पासा चिरुआ कोफरवा भीतर हम आएंगे मैं पासा चिरुआ पता ना कहां जिस वसैन बेसक कोफर ट्रक चला एक हैपन पार कर मेकअप ऑफ दैट
waar is mensen, dat weten wij niet. Maar als ik de situatie lees over de kerosine probleem van KLM, die Ulkaliski zijn naam getelen heeft, waarvan de situatie dat KLM niet betaald had, dan geloof ik KLM heel minder, die mensen. KLM gaat elke keer draaien diezelfde plaatje. Die persoon is nog buiten, die koffer is ingeladen en die koffers worden weer teruggezet, waardoor wij nu een beetje laat zijn met KLM. Dit heb ik niet één keer, diverse keren dezelfde bandje draait daar, mensen. To Ursula Bagus Samuch bhi a gaya hai. Auro yani Rakesh Samuch ke niche Ursula Bagus Samuch bhi a gaya hai. Ta aapko hum yani Pandit Tilak Dhari Vek se swagat karte hai yahan Den Haag se aapko. जनता और अब जाएला चिनैनी के ओर नानी छाउमांग छाउमांग छाउमांग चिनैनी के ओर जाएला भैया चिनैनी के ओर हम जाते बोलिए जॉनी चिनैनिया नासी बनाई इसकी बामी बनाई से चिनवा चिनैनी 40 बरिस के चिनैनी भैया बातचीत हो रहा है वॉलफ्राम स्ट्रैंड के बातचीत हो रहा है वॉलफ्राम स्ट्रैंड के बातचीत हो रहा है और बताए गए है बोले एगो टिप करेग द चिनैनी फ्रॉन और फिर बतरेफंड एड्रेस अंडर डुंग वर्दन इन खसेद फॉर प्रोटेस्टुए भैया एगो टिप सिपाही के मिलल है कि वहां पर प्रोटेस्टुए के काम चिनैनी करे है ये बात हो रहा है वॉलफ्राम स्ट्रैंड में भैया लो ना जाइयो बारा एच होई के सरनाम में जूता पहन के जाइयो हमारा भैया लोन सूरीनाम में बहुत जबर हाईफी फ्यूरस हो गए हैं हमें याद हुई कि हम बताए ला बीते हुए दिनों में इसका न्यूज हम पठारी बुद्धू कान खोल के सुन ले ना जाइयो जाच रही लगे हम अदर सुहा दे वॉलफ्राम स्ट्रैंड में भैया वहां पे मेंशन हैंडल हो अतरा चिनुआ के तेप मिले है तो बोले अब बतरेफंद अंदर अंदर दुआंग वर्दन इन खसेन पोर्टफोर प्रोटेस्ट twee naar aanleiding voor dit informatie werd een inval uitgevoerd waarbij twee vermoedelijke slachtoffers werden gevonden. Bhaiya te doei mila hua pe doei go au chowdi ke natuurlijk paisoi op basis van de aangetroffen bewijzen verklaring van de twee slachtoffers werden verdachten en afstemming Surinaamse sipahi ook gelegen hè ab gaile dekhe ki ke oke smokkel karke lai se aur kaise toriya भैल है हमारे जनता हम सुचित लोग के गो गनवा सुनाई दे ना तो गनवा जो सुनाई देवे तब अभी

और दोस्तों ये गीत बहुत लंबा है, इसीलिए हमें इसको तरी से रोक कर अपना समाचार को आगे लेकर चलना है। तो टोनी श्री आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। मालूम नहीं कार में है कि बस में है, लेकिन है रेडियो फोन पे। तो दोस्तों हम चलते हैं, यहाँ बातचीत हो रहा भैया, सब कोई बोले पड़ोसी नैली रघुनंदन महावीर आ भी आ गए हैं। तो नैली सब कोई बोले हमारे पड़ोसी भैया, अच्छा पड़ोसी बोले बहुत खुश नसीब वाल को मिलता है। हाँ जेके खड़े के वही मोई बिरमान पाई बिरफराव पाई पाई के करो खच्चड़ भैया एंट वे दरी लगी देर बैल दबावे। लेकिन यहाँ बातचीत श्री नाम के हुए है, यहाँ बातचीत हो रहा है श्री नाम के लुकास्त्रात के बातचीत हो रहा है। यहाँ पर जब तू बाजा जोर बजाइयो भैया, देर बैल दबाई पकड़ ले रहेगा भाई, ये कुछ रही डायरेक्ट क्लाक्ट। तो मोतर फिच पे लोग जा रहा है, फिर भी रेडियो फाहन को सुन रहा है, दोनों हाथ से स्थिर को पकड़ना जोर से। हाँ और यहाँ बताए गए हैं एक 25 साल के फैफन तुम्हें तक यारक क्लेरेंस है। बतावे गए सूरीनाम में भैया एक सिपाही पकड़ी सी का कर ले रहा भैया, ये का करेला लुकास्त्रांत में। बताए गए है ना एक नाई कई बार भैया, वार है फोकस ऑन हिज हेयर हाल दलग फॉर एनस्ट को ओवर लॉस एंड ब्रेकिंग हिज को सोरख पाए। सूरीनाम देश के बात है, बोलिए दमिया दुरुक्स फॉर सलाफ वीर मनवा हमारा बा। तब तो और गड़बड़ भैया, जब तू दुरुक्स पीयू के नशान रही है तब बताए से फरकलाल द अलखरोई में तेरे हिंदर तो अंदर फिंदर फन हार भीरमान क्लारेंस फोल्कस हार इसे दुरुक्स फर्स्लाफ्ट। अब बताए है सो इर्दर हैवन गड्रेक्ट हार वोने इन ब्रांड तो स्टेकन दाना सो है यार एन हार गसीन स्टेलसलमातक हैवन लास्ट गफालन एन बड्रेक्ट मेंसे। तो ये बात है इजुंकी जाए के अपन बिरमान के बड्रेक्ट करत रहा भैया, कई बेर बड्रेक्ट करी से और लड़त रहा उसे जो कर सलाब कमरा में भैया जाए के और रोका बोले एस्कालेर करी से इसे होर्द फरदाख्त तकीर खान वरना से स्लाब की आमर में घुस गए भैया। तो जिनकी तोर बगल में है कोई ना मांगे ऐसन बीरमान भाई, सब कोई मांगे हमारे बीरमान नेचस रहे। बोलब की बीर फ्रो हमें शुक्रु लेनी कर दिए, तो के बोले के कमवे नोलाए के तो के मीठा मीठा शुक्रु रे अगर देखो चुम्मा भी दे दे मीठा मीठा। दोस्तों ऐसन बीर फ्रो चाहिए और बीरमान हमार पेड़वा झुक गए तेरी काट दिए ना बीरमान। बोली बोली तो के बोले के काम है ये ना हम अपन काम छोड़ के आयला करे। तो ऐसन बिरमान ना चाहेगा तो नहीं, तो ऐसन बिरमान नसीब वाला के मिले भैया, ऐसे थोड़ो मिल जा। आप देखो शाया का बोले है ई मेक्सोन शाया हाई ध्यान है भैया माओ का बोले है मिनिस्टर फॉर जस्टिस एंड पॉलिसी के और मनोरथ के हनीश मनोरथ के बोले आज फी शेर है और एक कोई मंगबे ना करे भैया वहां पर। जेन साया मिक्सोन का बोले है बोले 10 गो पिकअप बोले हम देती लांटी के सीकर उही के मारे पिकअपुआ खातीन के माता अश्विशेर बनावे। तो हैत्यान के बोले रहा बोले 10 गो बोले 10 गो बोले पिकअप हम ले इफर करती आंसर नाम से ओवर हेड के सो दैट वेरक्स हम ही इन बेहतर आउट को फूड कॉर्नर वार्डन एंड हमेश का दारफान ओक सो कुन प्रोफिटेरन निश्चित है दारफान daarvan af vanwege de negatieve uitlaten richten hem naar dat betekent. Bekend werd dat hij adviseur van Jusman minister Harris Manorat Boleki Apole Hampikapua na debe omdat je adviseur na Bati Admino Klak Karita Bole hem na debe dat go pikapua to de Hanis Manorat Kaise Boliste de Lalish Deisu via Hanis Manorat ke Kitoke Hampaj go pikup debe Hametu Banale upon adviseur de Janta Huape Bahu critically for te bolen hem pikapua na debe. Het soort stoort de voormalige VHP-sponsor, vooral dat hij in de DNA zwaar is bekristeerd.
Opbele terwijl hij juist iets goeds voor het land wil doen, mensen. Tobina, bhaiya, chara ke machri na mile hai. Bhaiya, somar pick-up wat to thoro di hai. Paanch go pick-up di hai. Ta tu mangye okar 10 guna lanti se lewe. Aur na aise jamana hai, hai na bhaiya buddhu. So so me koi ek jhaanpad na mange mare. Tu paanch pick-up di hai saya. तू सोचा हाइटियान हम लोग बाटी का ना ना ना ना बोले आलस हीफ्ट अन रीडर मेंसे सोंदर द मिनिस्टर हैट वेट एक हैव 26 पिकअप्स जी ऑन दर वेक सेन एंड एक सो दार फन 10 पिकअप्स आनलीवरन बोले से मोक्तन से नीमन एंड वनेर हर गेल्ड एर इस कौन से में बतालन ook al is het na 5 jaar maar door die jugu ga ik je eerlijk zeggen dan mi abi Kanami Ede, zei Shaya in de interview. Bole hem na debe. To ye baat hai. Shaya ke baatjeet ho raha hai. Haitian ke bhaiya hi kahan itra paisa paise. Ab ekar batia chahi on the suk kare ke to. Lekin hamar Suriname me kahan hai fiat bhaiya. Glat hai. Baki koi opdrag na debe hai. Ki isa manayyan ke tu jatari on the suk kar ki tu. Itna din se deswam baate. Kahan tu itra paisa paile hai kaise tu itra moni mang hoi gele na khali eke ma aur to ke chahe andar suk kare ke chijua kaise hai to ye baat hai hamara president Suriname ke Jennifer Simons apan pura delegati leke Brasilia me gaile bhaiya apan admi ke bhi lege hega bole Brasiliaanse lucht maar afgereisd na Brasilia voor officiële bezoek het Surinaamse stadshoofd zal aansluiten een van Isis officieel bezoek brengen aan de Dominicaanse Republiek. Toen wahap je jijga, Glenn Geerling zoek dat het mee begeil he, delegatie leke, opbole in welke hoedanigheid hij aan de reis deelneem is vooralsnog onduidelijk. Waarvan Simons bolle raha, bolle ook er het mee doen he, ik kom een regering met deelnemen nakker he, maar toch ook er zijn ja he, maar ook er het mee he, ke ticket bhare, ke na bhare he, ek er baare me kush pata na he. Aap loon jano bhaiya, ego Hindu हिंदुस्तानी भैया एगो हिंदुस्तानी बस शफेर है स्कूल के लड़कन जन मोई ना रहा बेमरिया तरी लड़कन रहा ओके जाई के बतस्त करत रहा एगो 53 यार के हिंदुस्तानी बस शफेर है और एके भैया होफ में गईल है एके मांगत रहा ने छोड़वावे और ई अफका चंद्रा अलगू बोले धार्मी ब्लेव द एडबस लीसिंग वार में अनहोल्डिंग एंड फॉरसीकिंग स्टेल फॉर द फरदाखते रहमातक वर्दन फॉरक्लान फॉर लीड इन स्टंट और बोले हैगा 20 तारीख मई के ओके चम पकड़ी से जे मा अन किंड इन सेन बेस ऑफ हेवन बतास हेड फॉर सुक ऑफ बासिस फ्रॉम आर्टिकल 54 a वेटबुक स्ट्राफ ऑर्डरिंग वाज ईर्डर ऑल डोर द रेक्टर कमिसारिस अफगेवेन दाना स्टेल्ड द रात फ्रॉम होगर बुरुप इन टीगन द बस किकिंग तो ये सब बात है हमारी जनता तो हम एक दो समाचार और आपको सुनाएंगे अब देखो भैया फोरख रखेरे लेंड एक बार रखेरे लेने कल रहा 5 वर्ष में 2.2 मिलियार्ड अमेरिकन डॉलर और एक वर्ष के भीतर में 1.8 मिलियार्ड लेनी 10 महीना में करी से भैया फोरख रखेरे से तो की 2.2 मिलियार्ड लेने कल रहा 5 वर्ष में और यहां सिमोंस के रखेरे और रुसलान के रखेरे 10 महीना में 1.8 मिलियार्ड लेनी कर चुकल है एक बारे में मिनिस्टर आदलिन वेमर मान फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग सो यश कमेल इन द नेशनल असेंबली टेंडर्स द बहांडलिंग फॉर अ वेजिंग फॉर द कंपैटिबिलिटी विद 2024 में मिनिस्टर वेमर मान गिंग फर्दर इन द ओपन ऑफ द लीनिंग एंड दी डोर दिस रखेरिंग सेइंग गनोमन तो ये सब बात है दोस्तों और यहाँ पे बताया द स्टिक्टिंग सिंगल मॉडल प्रोजेक्ट सुरीनाम ओवर द मेंस्ट्रुएशन के बारे में बोले हैं मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्टर फॉर मिंद्रन स्कूल एंड वर्क फॉर सेम ऑन द फ्रॉवन एंड मेजर्स इन सुरीनाम तो भैया रंजीत लक्ष्मी नारायण सिंह भी आ गया सीता दिहाल भी आ गया है टोनी इस्त्री आ गया है इसी प्रोग्राम्स एक गिर के से आज हम अपना प्रोग्राम को खत्म करेगा नली रघुनंदन भी आ गए हैं
धर्मेंद्र स्त्री राजराम लगन चित्रा अवतार दिल बुद्धू यफतिंगन राम राज रंजीत राजा अयोध्या तोनी स्त्री चांदनी जितन कुमार शिवलाल ये सब हमारा प्रोग्राम में आए हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में भाग लेने को। आने हुआ हफ्ता में हमारा तुम्हारा मुलाकात होगा। बाय बाय नमस्कार।

हैं। तो आज हम आप लोग को दो टॉप सिंगर्स का प्रोग्राम हम सुनाएंगे और वो है यानी कि द टॉप सिंगर्स फ्रॉम इंडिया, द टाइगर ऑफ द इंडिया, कुमार शानू का गीत और एक बगल है अलका याग्निक का गीत। कुमार शानू के साथ अलका याग्निक के गीत हम चलाएंगे और फिर से उसके बाद हम चलाएंगे और वो है मोहम्मद अजीज का लवली हिट सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे। तो पहले हम चलते हैं मोहम्मद अजीज का ये सॉन्ग।

और दोस्तों, जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आप कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनी का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तलाश है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

तो मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

दोस्तों अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज का ये जोन थे। उसके बाद हम चलते हैं एक बार और आका यागनी कुमार शानू के उरे और हमारे यारो तो हम चलते हैं एवरी ग्रीन कुमार जानू एंड अलका यंगनी।

और बरसात में भी आग लग जाती है दोस्तों, तो ये सब तो प्यार की बातें होती है यार। तख्त में जो सदाबहार जोन है और वो है कुमार शानू अलका यांगनी का एक गीत आपको हम सुनाते हैं। और दिलबर के बाद में हम क्या आते हैं,

और ये सब गीत से, और ये सब गीत से आदमी लोग के गर्मी लग जाता है। प्यार के गीत है और प्यार के मूड में आज है, तो हम और अगला गीत की ओर जाते हैं। और वो है, जब किसी को जब आप प्यार करते हैं तो आपको क्या दिखना, क्या दिखते हैं आपकी आंखों के आगे, आपके नजर के आगे क्या आ जाते हैं? जो अगर सचमुच किसी को प्यार जो आप करते हो तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

रब ने जोड़ी जरूर बना देगी। हाँ प्यार है और प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

और दोस्तों आज आप लोग को हम ओनली लवली सॉन्ग सुनाएंगे। हम चलते हैं जग घुमाए गब घुमाए की ओर, हम चलते हैं एक प्यार भरी लवली सॉन्ग, राहत फतेह अली खान।

0: जगे घूमता जैसा तुम्हारा और क्या क्या है दोस्तों, तो हम आची फिर से और प्यार के मूड में है, चलते हैं तेरी मेरी क्या है चला जाए।
1: शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
2: ऐसे कैसे पूछूं तुम्हें,

0: और आंखें भरी भरी और मुस्कुराने की बात करते हो तो कैसे होगा हमारे यारो। और दोस्तों तो एक गीत हम और आप लोग को, ये है प्यार भरी नगमों की बहार, प्रोग्राम ख्वाबों का तू है और क्या।
1: राहों में लम्हे रुक जाए, ऐसे ही टूट के दिल तुझको चाहे, फिर से उन यादों के पुर्जे उड़ा रहा हूँ, फिर से तेरा रह गुजर।

अरे दोस्तों, ख्वाबों का तू है रे गुजर रे तू दोस्तों, हम प्यार के मूड में आज हम हैं ते ही तो यारो, हम चलते हैं एक गीत की ओर।

मेरा एक सपना है, क्या आपके भी सपना होगा? तो जो सपना है तो कभी कभी पूरा हो जाता है और कभी कभी और बहुत अफसोस है कि नहीं पूरा होता है। मरे एक छोटू के लिए है।

मुकेश माइटी मुकेश करोड़ों का दिल चुराने वाला हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैल।

लगी जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर। ओ हे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

और दो लफ्जों की है ये कहानी। मूवी का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमा ने इस फिल्म में काम किया है। गीत को गाया है आशा भोसले दोस्तों। और ये ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग आपको जरूर अच्छा लगेगा। आओ सुना जाए ये क्या है।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये घुमारे
2: कहाँ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। दोस्तों आउट इन गोल का प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं हमारे, तो यहां पर क्या है आओ सुना जाए आउट इन गोल का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बहार प्रोग्राम है।

जन्म ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे यारो हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए, ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एन महमूद इन गोवा, अथवा सुपर हिट फिल्म में से। और ये गीत आपको हम सुनाते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से और यहां से सुनाते हैं।

0: ये गीत थी एक बहुत मशहूर गीत है, आओ सुना जाए ये क्या है।
1: बेकरार
0: महेंद्र कपूर नहीं दोस्तों,
1: आपको हमारी पसंद लौट
0: हेमंत कुमार।

0: चल।
1: और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाड़ सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम मस्त महीना। और नतिगिल लता जी और परमाश्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम मस्त महीना नैतिक लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए हम चाहते हैं माइती मुकेश की ओर की

और मेरा दिल ये पुकारे आजा ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग, और कभी कभी होते हैं सर पे टोपी और वेलकम क्लोज दुपट्टा। आओ सुना जाए।

पूरे अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और सोनू निगम अलकायंगनी का ये प्यार भरे लवली सॉन्ग के बाद हम चलते हैं उदित नारायण जिस बहुत खूबी से इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए ये क्या है।

और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

मेरी सनम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे टुकड़े हैं मेरे दिल के ऐ यार तेरे आंसू। आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी।

अभी आप सुन रहे थे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू फ्रॉम द मूवी मेरे सनम से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, मोहम्मद रफी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में आशा भोसले के साथ में।

अभी आप सुन रहे थे गा दीवाने झूम के रात की जुल्फे झूम के, मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, ब्लफ मास्टर है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आप सुनेंगे।

सोचा था प्यार हम ना करेंगे, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लफ मास्टर से हमने पेश किए हैं दमयंती मुकेश जी की आवाज में। लता जी के साथ में मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है, दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर। उजाला है फिल्म का नाम।

अभी आप सुन रहे थे दुनिया वालों से दूर चलने वालों से दूर आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है इस दिल में क्या हुआ है एक सपना सा जागा है। मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी परवाना से आप सुनेंगे।

जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जागा है। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि जमीन वाले मायूस कर सकते हैं, जमीन वाले मायूस कर सकते हैं मगर आसमां वाला नहीं। चल मेरे दिल लहरा के चल।

चल मेरे दिल लहरा के चल, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इशारा से, अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। फ्रॉम द मूवी परवरिश से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में मन्ना दे जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

आप सुन रहे थे मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। मन्ना दे जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। कोई कोई आदमी दीवाना होता है, फ्रॉम द मूवी स्वीट हार्ट से हम पेश करेंगे द माइटी मुकेश जी की आवाज में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, और जो किसी के जाने के बाद होता है वो पछतावा होता है।

दमाईती मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे कोई कोई आदमी दीवाना होता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हमसफर है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हमसफर है जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है, जो सिर्फ खुशी का मोल करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। फ्रॉम द मूवी मधुमती से आप सुनेंगे

जो सिर्फ किसी का मोलक यानी जो सिर्फ खुशी का मोलक करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। नमाइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मधु मालती। जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी में यानी जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी की आंखों में आंसू आपके लिए।

द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सोता यानी सोसाइटी से, दिल मेरे तू अकेला था तू अकेला है। मुस्कुराहटे झूठी भी हुआ करती है जनाब, मुस्कुराहटे भी झूठी हुआ करती है जनाब, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। मोहम्मद रफी आपको सुनाने वाले हैं ओ मेरे शाह हुआ।

अभी आप सुन रहे थे ओ मेरे शाह खुबा ओ मेरी जाने जनाना, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। ऐसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी तकदीर से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कैसे कोई जाने भला फ्रॉम द मूवी तकदीर से द टाइटल। अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे, हेमंत कुमार जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी प्यासा से हम पेश करते हैं, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला।

0: जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी प्यासा से हमने पेश किए हैं हेमंत कुमार जी की आवाज में। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले।
1: डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है 5

अभी आप सुन रहे थे आ जाऊं कि तुझे मैं लेके चलूं। किशोरदा आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दूर गगन की छाओं में। किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, फ्रॉम द मूवी जोशीला से हमने पेश किए हैं, किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अमर प्रेम है फिल्म का नाम। चलिए मिलकर सुनते हैं।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

अभी आप सुन रहे थे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किशोर डा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं,

अभी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज में घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने।

तेरे चल गए, अभी आप सुन रहे थे। तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन की किसी में नहीं नहीं, फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है। इसी फिल्म से हमने पेश की है, लता और मोहम्मद रफी जी मिलकर आपको सुनाने वाले थे। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, जब मोहब्बत जवान होती है।

अभी आप सुन रहे थे जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जुबान होती है। अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, मोहम्मद रफी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बेटी, बेटे से

जाने मन तुम कमाल करते हो, फ्रॉम द मूवी त्रिशूल से हम पेश करते हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

आप सुनते यानी सुने हैं जाने मन तुम कमाल करते हो। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह।

मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह भी आप सुन रहे थे। किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कर्श। आप सुनेंगे मैं 16 बरस की, तुम 17 बरस का।

अभी आप सुन रहे थे गपुची गपुची गम गम फ्रॉम द मूवी त्रिशूल से हमने पेश किए हैं। छोड़ो भी ये नखरा, करो प्यार हमसे।

अभी आप सुन रहे थे छोड़ो भी ये नखरा, करो प्यार हमसे। एक रोज में तड़प कर बेमिसाल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

निकाह है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिल रुबा मिले, महेंद्र कपूर जी के साथ में सलमा आगा जी आपको सुनाने वाले थे। तुम्हारा प्यार चाहिए

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। अभी आप सुन रहे थे ऐसे ना मुझे तुम देखो, किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ऐसे ना मुझे तुम देखो। हम दोनों मिलके कागज पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा।

मुकेश और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। हम दोनों मिलके कागज पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। फ्रॉम द मूवी तुम्हारी कसम से हमने पेश किए हैं। अदालत है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं। ओ तुमसे दूर रह के

अभी आप सुन रहे थे हो तुमसे दूर रह के फ्रॉम द मूवी अदालत से हमने पेश किए हैं सुन साइबा सुन।

उठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा, मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

सुन रहे थे ना रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से अभी हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे आशा भोसले के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी। धड़कन है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैं तो चला जिधर चले रास्ता।

मैं तो चला जिधर चले रास्ता, भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जगा है, मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी परवाना से हम पेश करते हैं

आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की आवाज़ में जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन से एक सपना सा जागा है। लहरा के आया है झोंका बहार का मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी वारिस से आप सुने।

फ्रॉम द मूवी वारिस से हमने पेश किए है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में लहरा के आया है झोंका बहार का। ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे। फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी।

दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है आशा भोसले और किशोर डा की आवाज़ में आप सुनेंगे दूरियां नज़दीकियां बन गई जब इश्तफाक है।